नमस्कार, सुप्रभात। FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मानताव केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की चतुर्थी तिथि, तदनुसार 25 जून 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की सभा प्रारंभ होती है।

एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर

0: करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं वंदन वार और चिंतन, हमारी राष्ट्र सेवा विविध भारती मुंबई केंद्र से।

वंदन वार, सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है कि किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं। वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ईश्वर प्रेम का मार्ग नहीं बल्कि संपूर्ण प्रेम ही है। जो मनुष्य ईश्वर के प्रेम में लिप्त होता है उसे ये संसार अपना ही रूप लगता है। समस्त जीव जंतु सहचर प्रतीत होते हैं और वो स्वयं ब्रह्मांड की विशाल सत्ता के सामने नतमस्तक होता है।

भक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में ही भक्ति का सार छिपा है। चंदन घिसने से पत्थर भी सुगंधित हो जाता है, ये सगुण भक्ति रूप है। तो उस पानी की कल्पना कीजिए जो चंदन और पत्थर के घर्षण के समय उपस्थित होकर चंदन ही बन जाता है। हमारी भक्ति उस पानी के समान ही होनी चाहिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन। आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुनिए झरोखा के अंतर्गत। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुन सकते हैं। आज सुनिए 230वीं कड़ी। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी सुनिएगा। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 से हम है राही प्यार के और 8 बजे से समाचार प्रभात। से सुन सकते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 से नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार मदन मोहन पर। सुन सकते हैं 9:30 से। 10:00 से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनिए चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। संपादन काजल भदरगी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 11:00 से रंग तरंग और 12:00 से हिंदी में समाचार।

सुनीरा सफर कार्यक्रम 1 बजे से 2 बजे से सुनिए त्रिवेणी। 2:15 से दोपहर समाचार, 2:30 से सदाबहार नगमे कार्यक्रम और 3 बजे से सुनिए सखी सहेली। 4 बजे होंगी आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी हेलो फरमाइश कार्यक्रम के साथ। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण, तराने नए पुराने कार्यक्रम 5:30 से और 6 बजे से

समाचार। छह बजकर पांच मिनट से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम छह बजकर तीस मिनट से झरोखा के अंतर्गत आज के शीर्ष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुनिएगा। छह बजकर पैंतीस मिनट से संध्या रंजन और छह बजकर पैंतालीस मिनट पर सुन सकते हैं संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार आठवीं कड़ी। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। शाम सात बजे से जयमाला, सात बजकर पैंतालीस मिनट से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम में निर्देशक और फिल्मकार सुभाष जैन से नंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी सुनिएगा। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। लो कर लो दर्शन, ये झलकी सुन सकते हैं रात आठ बजे से हवा महल में। लेखन आतिश का, निर्देशन हर्षवर्धन गवई का।

रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या, 9 बजे से सुनेगा कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम सुन सकते हैं, केंद्रित है संगीतकार मदन मोहन पर। रात 10 बजे से छाया गीत, 10:30 से ढलती जाए रात और 11 बजे से रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, श्री रामचरित मानस। सुनिए 230वीं कड़ी।

देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें, ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सकें। किंतु सरस्वती जानती थी कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है, और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया।

0: अर्पा। फिर धैवत भी शुद्ध है, निखात उसकी कोमल है, रिखब और निखात दोनों कोमल है। सारे गामा पाधा निशा
1: जी,
0: मैं आपको इस पे करके बताता हूँ।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायोलिन का विहंगम संसार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र। पंडित जी, प्रातः समय गाए बजाए जाने वाले रागों में एक मुख्य राग है अहीर भैरव
2: जी।
1: आज इस राग की चर्चा करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: अहीर भैरव राग का हमें परिचय दीजिए, कैसा इसका चलन है, इसके आरोह अवरोह के बारे में कृपया बताइए।
2: इस राग में देखिए रिखव सा तो होता ही सब राग में, सा के बाद रिखव कोमल है, गंधार शुद्ध है, मध्यम शुद्ध है, पंचम तो शुद्ध होता ही है।
1: हाँ।
2: वो तो स्थिर स्वर है सा।

0: इस राग की खासियत यह है कि भैरव के प्रकारों में ये बहुत लोकप्रिय राग है।
1: जी जी।
0: और इस पे फिल्म वालों ने भी काफ़ी काम किया है, कुछ अच्छे गीत बनाए हैं, और क्लासिकल म्यूजिक में भी ये बहुत लोकप्रिय राग रहा है। तो पहले मैं आपको इसमें एक बंदिश सुनाता हूँ, उस्ताद अमीर खान साहब की बंदिश है वो।

0: क्या बात है पंडित जी। अहिर भैरव में ये खूबसूरत बंदी सुनने के बाद अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मन्ना दा की आवाज में मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गाना। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई,
1: वो ऑल टाइम ग्रेट गीत है वो।
0: जी जी।
1: और उसमें जिस तरह से पंडित रामनारायण के जो सारंगी के पीसेज हैं,
0: जी हाँ,
1: वो बहुत सुनने काबिल
0: हैं। बजाइए, सुनते हैं
1: जी।

0: मन्ना डे के स्वर में अहीर भैरव राग पर आधारित मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं। ये रचना शैलेंद्र की, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, बस कुछ ही पलों के बाद।

विविध भारती पर कार्यक्रम भूले बिसर गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आज है संगीतकार मदन मोहन के जन्म की तारीख और उन्हें याद करते हुए उन्हीं के संगीतबद्ध गीत इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं।

0: मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। भाई भाई फिल्म के इस गीत में गीता दत्त की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

अधोश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़, राजा मेहंदी अली खां के बोल और मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

0: चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज़,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लक्ष्मी शंकर की आवाजों में मस्ताना फिल्म से गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: छोटे बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, कैफ इरफानी के बोल, मदन मोहन का संगीत।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।

FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मानता बुक केंद्र है। सवेरे के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर व इला अरुण की आवाज में, जिसे हमने चुना है फिल्म लम्हे से। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, सुरों से सजाए शिव हरि ने। लीजिए प्रस्तुत है ये प्रस्तुति।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
2: श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आइए सुनवाते हैं लता मंगेशकर व सुरेश वाडेकर के युगल स्वरों में, जिसे हमने चुना है प्यासा सावन से। गाने के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने, सुरों से सजाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आपको सुनाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म गुरु का है गीत। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है AR रहमान ने।

पुरानी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आइए आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक व उदित नारायण की आवाज में, जिसे हमने लिया फिल्म लगान से। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है AR रहमान ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म अभिनेत्री से। गीत को लिखा है मजनू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी संपन्न होता है। FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति

0: फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है

0: पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुजुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देशबंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर,

0: अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 1,15,00,000 डॉलर चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएमएक्स 3.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। सवेरे के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम त्रिवेणी, हमारी राष्ट्रीय सेवा विविध भारती मुंबई केंद्र से।
3: सुने त्रिवेणी।

साथियों, मौसम चाहे कोई भी हो, प्रकृति का सर्वाधिक सुंदर रूप धूली निखरी ओस से भरी शीतल सुबह में होता है। हर एक सुबह का अपना ही सौंदर्य है। स्वच्छ ताजी हवा और सूर्य की पहली किरण का स्पर्श हमसे कहता हुआ प्रतीत होता है, जागो मोहन प्यारे, भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत हो। रात्रि के अपने विश्राम कक्ष में जाते ही सूर्य का रथ गतिमान हो उठता है और हम सभी निर्मल मन के साथ नई सुबह के कोरे पन्ने पर एक नए दिन का संकल्प लिखते हैं और मुड़ जाते हैं अपने जीवोन्मुख कार्यों की ओर।

हर नई सुबह हमारे लिए जागरण का संदेश होती है। एक नई आशा, नई उम्मीद के साथ हमें कर्म पथ पर चलने का हौसला देती है। सुहानी सुबह के अद्वितीय सौंदर्य में हम शांत मन से प्रकृति के नैसर्गिक संगीत को सुनते हैं। ठंडी शीतल सुबह में सूर्य की किरणों के स्पर्श से खिलते फूलों की सुगंध और पंछियों की चहचहाहट हमें ऊर्जावान बनाती है। फूलों की तरह खिलती महकती हमारी सुबहें हमारे जीवन को नित नई दिशा देती हैं। एक आस का सूरज हर दिन हम सभी के लिए उदय होता है।

हमारे जीवन में उल्लास भरती खुशियों की उजास लिए सुहानी सुबह हमारी आस का वो तारा बनकर चमकती है, जो हमें हमारे सपनों की राहों पे चलकर एक नई पहचान, नया आशियां बनाने को प्रेरित करती है, हवाओं पे एक नई कहानी लिखने का हौसला देती है। जागो, उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो।

साथियों, हर सुबह एक नई आस को जन्म देती है और इस आस को हम जिंदगी कहते हैं। अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। सवेरे के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनाएंगे चेतना शर्मा द्वारा गाए कुछ लोकगीत।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आइए आपको सुनवाते हैं चेतना शर्मा की ही आवाज में।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग अभी समाप्त होता है। FM 103.5 MHz पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। सवेरे के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वे जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास और विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम से जुड़े सुरक्षा मानकों और अन्य सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा किया जाए। इस ऐतिहासिक आयोजन को विकास और रोजगार के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक आमजन और जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से मुख्य समारोह से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग और पोर्टल पर आंकड़ों को समय पर अपडेट करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे परियोजनाओं में देरी और लागत को बढ़ने से रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सक्रिय शासन और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से जुड़ी 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। 4 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

0: प्रतियोगिता देशभर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। युवा संसद का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, विभिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता, विचारों की सही अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। करौली जिले के खंडीप में पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना कल शाम समाप्त हो गया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से समझाइश की। डॉ. मीणा ने किसानों को आश्वस्त किया कि आगामी 6 दिनों के भीतर पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ दिया जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करते हुए धरना समाप्त करने की घोषणा की। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे करौली संवाददाता।
1: पांचना बांध के पानी को लेकर जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। कैचमेंट क्षेत्र के 39 गांवों को प्राथमिकता से पानी देने की मांग को लेकर गुडला पांचना संघर्ष समिति बांध पर धरना दे रही थी, जबकि कमांड क्षेत्र में नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसान खंडीप में आंदोलनरत थे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के आश्वासन के बाद दोनों पक्षों ने अपना आंदोलन समाप्त और स्थगित कर दिया। अब प्रशासन किसानों के बीच समन्वय बनाकर स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करेगा। माकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने प्रदेश की 5 विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक सहित अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हाल ही में टेक्नीशियन थर्ड के 2163 पदों का अंतिम परिणाम जारी करने के तुरंत बाद ये निकाली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये भर्ती बजट घोषणा के अनुरूप की जा रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये नतीजे जारी करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अनुपालना को लेकर जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 31 मार्च तक राजस्थान को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर लाने के लक्ष्य के साथ काम करने के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने आगामी 31 जुलाई तक 4000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने और पुराने कचरे के ढेरों को पूरी तरह हटाने को कहा। साथ ही 31 अक्टूबर तक 1600 ग्राम पंचायतों में कचरे को अलग करने के लिए 4-स्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसका मंत्री खुद निरीक्षण करेंगे। उन्होंने वर्ष 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% स्वच्छता का लक्ष्य रखने और विलायती बबूल उन्मूलन अभियान के लिए सभी विभागों को मिलकर संयुक्त कार्य योजना बनाने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर पहुंचेंगे। वे कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहेंगे। निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेशभर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु आज निर्जला व्रत रखकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में किला स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। इस अवसर पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। सवाईमाधोपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से लोगों के लिए ठंडे पेय पदार्थ पिलाने की व्यवस्था की गई है। अजमेर में तीर्थराज पुष्कर में विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता

0: ने बताया कि मंदिरों में भजन कीर्तन के आयोजन हो रहे हैं।
1: प्रातःकाल से श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और दान पुण्य के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: उधर पाली जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर में भगवान का 450 किलो आम से विशेष श्रृंगार किया गया है। जयपुर नगर निगम आगामी दिनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए फायर एनओसी को लेकर लगातार सर्वे और जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत कल निगम की टीम ने शहर के विभिन्न तरह के 74 भवनों का निरीक्षण किया और कमियां पाए जाने पर 53 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडी में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। सवेरे के 9:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक, हमारी राष्ट्रीय सेवा विविध भारती मुंबई केंद्र से।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत, इरशाद कामिल के बोल, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल हिमेश रेशमिया की तर्ज और आवाजें अमन त्रिखा विनीत सिंह और साथियों की।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

विशाल शेखर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे। बैंग बैंग फिल्म के इस गीत में हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाज है, अन्विता दत्त के बोल। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। हृदय गट्टानी की आवाज में ये गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत, फिल्म बैंजो से सुनिए ये गीत।

0: अमिताभ भट्टाचार्य के बोल विशाल शेखर का संगीत। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और दिन भर जहां भी रहें, रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के लिए अपने दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

0: बैठे।
1: आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिलके काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें
1: अवार्ड्स
0: बड़े
1: हो।
0: बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
1: जी, मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था, और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 बजे ऑन किया, और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज़ में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूँ। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ, और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूँ, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया, और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफ़ी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी, और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी, और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है, और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
0: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था, और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के 2 सूट सिलवाए, और मदन जी और संजीव कुमार ने वही 2 सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

0: के बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूँगा क्योंकि इट बी ईजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे कहा छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज़ चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथे बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए, और उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। हम सब

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
2: जी। नमस्कार,
1: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: विविध भारती एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
1: संगीत सरिता
2: अभी भी आता है। उसमें हाँ, उसको हम लोग बहुत सुना करते थे। और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
1: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे मेरे ख्याल से, पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
2: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
1: अच्छा।
2: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ

0: ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई
1: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
0: जी हाँ।
1: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को
0: जी जी। जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप। किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
1: क्या बात है।
0: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में यही करना है या यही रहना है तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में
0: उस वक्त? हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले
1: जी।
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है? तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी, तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कम्प्लीटली। और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले
1: जी।

0: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहाँ पर जंगल में वन प्राणी हैं और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करते हैं?
0: मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में
1: जी।
0: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को या उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।
2: ओ शाम कुछ

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा कर के उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है। और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
0: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
1: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूं, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं। और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था। अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं, वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है। मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज़ सिर्फ

0: करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया, और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की, तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था, और
1: क्या
0: वो एक
1: बात
0: बहुत
1: है।
0: बड़ी चुनौती भी था। किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हर ही रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम
1: हम
0: है।
1: अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे, हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग। जी आगे
0: हाँ, तो
1: बताएं।
0: मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए। तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया, और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते भी लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें, तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है।
1: जी
0: किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है, और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है
1: जी
0: लगातार। तो ये जो चीज़ें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल। यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मैं चाहूँगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही
1: फुर्सत
0: फुर्सत
1: की
0: के रात
1: रातें,
0: दिन।
1: मौसम फिल्म का गाना है,
0: जी हाँ।
1: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमैन शो था बम्बई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चश हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चेस्टर हविज आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है और

0: तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियां सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
1: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बोले, यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ। और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सके, और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए, और वो उन्होंने 80 चित्र जो हैं अपने घर के एक कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे। और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे, और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस जर्नी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं,
0: तो आपने
1: तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग, और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई तो वो हो नहीं
0: वो
1: पाया।
0: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
1: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
0: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी,

0: कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है। अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं। तो आप इसके बारे में बताइए, कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर हैं वैदेही, उनको बोल करके अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में। और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफ़ी गहरे संबंध भी थे। तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज़्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला। और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है। ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी।
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है। तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
0: जी जी।
1: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ। ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए
0: जी,
1: कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
0: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर।
1: हाँ।
0: तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
1: ये जो मेरी किताबें हैं इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में, और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है
0: जी।
1: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
0: जी।
1: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिखी। तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो
0: जी। जी, तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
1: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है, मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ मेरे जो पर्सनल संबंध थे।

0: इतने साल, 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना। क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहाँ कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, 6 हु डिक्लाइन ट्रिनाल है, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसिल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था
1: जी जी।
0: तो सबसे पीछे ही था, तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है।
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ,
0: बहुत ही आश्चर्य था, क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, पर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना मोती सी नजर, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं
1: जी। यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस बात का वादा कर लो, सुनते हैं ये गाना।
0: फिर

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा

0: बढ़िया नॉवेल है और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है वो।
1: जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में, विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में, एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
0: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत ज़रूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचे कैसे। तो वो जो पहुँचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
1: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
0: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
1: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
0: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं।
1: जी।
0: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक करके, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
1: जी जी जी।
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, तो वो शायद रंग ही है।

0: मनुष्य को संबोधित है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी, यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा
1: जी सुनते
0: ये
1: हैं,
0: ये वाला सुनता
2: है।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत

0: सारी चीजें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
1: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
0: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
1: जी जी।
0: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
1: जी, ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
0: हाँ,
1: ये भी थोड़ा सा बताया।
0: ये बहुत ही जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगातार काम करने से ही आती है। रजा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
1: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
0: इसमें दोनों तरह की चीज होती है। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है, आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है कि जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते
1: और वापस उस चित्र में उस यात्रा में वापस लौटना भी मुश्किल होता है
0: वो।
1: जी, इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंडित कुमार गंधर्व की गाए इस भक्ति पद के साथ।

कुमार गंधर्व की आवाज में अभी आपने ये भक्ति पद सुना और आइए अब सुनते हैं आनंद मिलिंद का संगीत, गुलजार साहब की शायरी, गायिका है आशा भोंसले और ये एल्बम है दायरा।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

इश्क में ना किए रह गया होंठों को सिए, खूने अरमान हुआ उफना किया

रहे। रोशनी का पाये पामा तेरी दुनिया के लिए, अपनी पलकों पे जला रखे थे गाजी ने दिए,

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल और शेखर के संगीत निर्देशन में रजत अरोड़ा का लिखा गीत। गायिका हैं सुनिधि चौहान और फिल्म का नाम है द डर्टी पिक्चर।

कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और आवाज है शफकत अमानत अली की। ये एक गैर फिल्मी गीत है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

कार्यक्रम में आप सुनिए मसरूर अनवर का लिखा ये शेर। इसे आवाज दी है रूना लैला ने।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाजों में हम आपको एक गैर फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं यतीन्द्र मिश्रा और संगीत दिया है प्रीतम ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। यह आवाज है भूपेंद्र सिंह की। विमल कश्यप के बोल हैं और निखिल कामत का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको एक भक्ति पद सुनवा रहे हैं।

रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की और हम आपको संत मीराबाई का ये भजन सुनवा रहे हैं।

0: 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। दिन के 12 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान

0: लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जांच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। दिन के 12:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक करता है NCERT।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की प्रतीत।
1: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
0: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
1: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
0: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: Thank you. How are you? Happy birthday, Stephen! Thank you,
5: Thomas. Congratulations!
4: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
4: Thanks for coming in. Please come in.
3: Oh, sure. Yes. Why not?
2: Come. Yeah.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure.

जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?

0: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
1: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
0: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
0: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
1: नहीं नहीं,
0: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
1: ओह गॉड, ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन

0: उनके खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
1: वे जानती थी कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
0: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
1: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
0: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की यह विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,

0: सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
2: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
3: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
3: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
7: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
8: सूरज।
6: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
7: बहुत आसान पूछते हो।
6: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
7: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
6: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
7: हाँ।
6: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
7: हाँ। मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
6: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
9: वो तारा होता है।
6: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
10: वो रात और दिन भी बनाता है।
6: एकदम सही एकदम सही।
9: वो हमें धूप भी देता है।
6: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
7: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
6: हाँ।

0: हाँ, हमें क्या मिलता है पता है उससे?
1: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो। विटामिन डी मिलता है, अरे तुम्हें पता है? तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत
1: और
0: अच्छे।
1: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता, सुबह को रोशनी नहीं आती फिर।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
2: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल, एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
2: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
1: हाँ,
3: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
2: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना,
2: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
1: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
1: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
2: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
1: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
2: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
2: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
1: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
2: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
1: नहीं
0: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
4: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
4: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
4: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
4: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
4: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
4: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
4: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मौसी, एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
1: जल्दी आना मौसी। आना।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ?
2: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस दस पहेलियाँ? अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
2: डर जाती है। कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
1: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजकर्ता थे NCERT। FM 103.5 MHz पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। दिन के 12:35 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। हमारी राष्ट्रीय सेवा

0: भारती मुंबई केंद्र से।
1: राजा मेहदी अली खान की रचना, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है मेरा साया। संगीतकार हैं मदन मोहन और अभी तक हम आपको सुनवा रहे थे मदन मोहन की संगीत रचनाएं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म मेरा साया का गीत सुना। गीतकार राजा मेहदी अली खान थे और संगीतकार थे मदन मोहन।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों अभी तक आप सुन रहे थे मदन मोहन की संगीत रचनाएं और अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर की फिल्मों से कुछ गीत। तो लीजिए पहले हम आपको नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ ये गीत सुनवा रहे हैं। उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाजें। फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के बोल, उदित नारायण की आवाज और ये फिल्म है अनाड़ी।

इस कार्यक्रम का अब आखिरी गीत सुनिए। आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के बोल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें। फिल्म का नाम कूली नंबर 1।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये ममता केंद्र है। दिन के एक बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने देश के लोकतंत्र और संविधान के आदर्शों को कायम रखने वाले नागरिकों के असाधारण साहस की सराहना की। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि आपातकाल एक कठिन दौर था जब देश के संवैधानिक मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने देश की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का आह्वान किया। आपातकाल की बरसी पर

0: आज जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आयोजन में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज जयपुर के शिक्षा संकुल में ये परिणाम जारी किया। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के लिए एआई आधारित समाधानों पर चर्चा करना है। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार कार्यशाला से प्राप्त सुझाव ग्रामीण विकास में एआई के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करने में सहायक होंगे। राज्य पुलिस ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मोटर यान अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाया है। महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर 4 से 23 जून तक चले इस अभियान में रिकॉर्ड 158,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. बी.एल. मीणा ने बताया कि इस दौरान नियमों के विरुद्ध ब्लैक फिल्म, अवैध हुटर, अनधिकृत लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और गलत नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनों के चालान काटे गए। जिलावार कार्रवाई में जालौर जिला पूरे प्रदेश में पहले और अजमेर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जयपुर कमिश्नरेट में 807 कार्रवाई की गई। पुलिस ने आमजन से सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है। राज्य पुलिस ने साइबर ठगों के नए तरीके को लेकर एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी अब फर्जी बॉस या आरबीआई जैसी नियामक संस्था बनकर कर्मचारियों, विशेषकर वित्त विभाग के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर ठग ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर तत्काल भुगतान का दबाव बनाते हैं। वे कोई लिंक या जिप फाइल भेजकर सिस्टम हैक कर लेते हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि बिना पुष्टि किए कोई वित्तीय लेनदेन ना करें और अनजान लिंक या फाइल बिल्कुल ना खोलें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराएं। अजमेर के ब्यावर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से नशा मुक्ति के लिए ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा शुरू किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन और महानिरीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नो ड्रग्स जोन बनाना है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थाओं के 500 मीटर के दायरे को पूरी तरह नशा मुक्त क्षेत्र बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यावर के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्कूलों में शिकायत पेटी भी स्थापित की गई है। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियों में और तेजी आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी भाग में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बरसात 12 जिले के अटरू में रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.5 MHz पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। दिन के 1:05 हो रहे हैं। आइए जुड़ते हैं हमारी राष्ट्रीय सेवा विविध भारती मुंबई केंद्र से। सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर।

जी, तो अभी आपने जगजीत कौर की आवाज में फिल्म शगुन का ये गीत सुना। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था खय्याम साहब ने। और हमारे श्रोताओं ने बता दिया है कि आज हम वाद्य यंत्र पियानो की बात कर रहे हैं। जी हाँ, और देखिए ये जो वाद्य यंत्र बज रहा है ये भी पियानो ही है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है और वो लिखते हैं कि भाई आज पियानो से जुड़े कुछ फिल्मी गीत आप लेकर आई हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने तो बहुत सारे वाद्य यंत्रों का जिक्र कर दिया है, जैसे कि गिटार, हारमोनियम, ढोलक, वायलिन, शंख, मृदंग, तबला, सैक्सोफोन, सितार और बांसुरी का। नहीं नहीं, आज हम बात करेंगे किस पर? पियानो पर। जो पियानो से जुड़े गीत हैं जहां पर नायक या नायिका की उंगली थिरक रही है पियानो पर। एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात जिस घड़ी निशब्द झड़ते हैं धरती की गोद में, तब दबे पांव सितार की झनकार तारों की ओढ़नी ओढ़कर सोए कंदील को जगा देती है। दुख सुख का कोई भी पल हो, वाद्य कोई भी हो, कुछ गीतों ने जीवन में बड़ा डांडस बधाया है। वाद्य कोई भी हो, ये हमारे संवेदना की दुनिया के सच्चे साथी हैं। ये गीत जो आज बजेंगे वे हमारी सांसों में तिरते हैं, कानों में उतर कर मन के अंतर्मन को विकल कर देते हैं। आज के सुरीले सफर में जीवन रस में डूबे गीत सुनने को मिलने वाले हैं। कल्पना को परवास देते इन गीतों की अनुगूंज पहरों पहर मधोश किए रहती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है। देखिएगा आपके जो गीत आपने लिखे हैं क्या वो गीत हमारी पसंद से मेल खाते हैं। आपने लिखा है कि आज मीठी धुनों से सुरीले संगीत से सजा है सुरीला सफर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के अनुसार आज के गानों में विभिन्न वाद्य यंत्रों की झनकार सुनने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर विषय है। जी हाँ, वैसे तो हर गाने में बहुत सारे वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन हमने जहाँ खास तौर से पियानो बजाया गया है उन गानों को चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि और वो वाद्य यंत्र और कोई नहीं पियानो ही है। आज हम पियानो पर बजने वाले गाने सुनेंगे, जैसे कि इन्होंने गाने का जिक्र भी किया है। वहीं एक साथी लिखते हैं कि नायक और नायिका को जब दुख और उदासी घेर लेती है तो दिल की व्यथा को उजागर करने के लिए वो गाने का सहारा लेते हैं और पियानो बजाकर अपना दुख व्यक्त करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो सिर्फ लकड़ी, तार और चाबियों का ढांचा नहीं है, वो इंसानी जज्बातों को सुरों में ढालने का एक जरिया है। जब इसकी सफेद और काली चाबियां पर उंगलियां थिरकती हैं तो मानो वक्त थम जाता है। पियानो की धुन में शब्दों की जरूरत नहीं होती। इसकी धीमी आवाज जहां आंखों में आंसू ला सकती है, वहीं इसकी तेज और ऊर्जावान धुन थिरकने पर हमें मजबूर कर देती है। बहुत सुंदर क्लासिक विचार। ठीक हमारे

के गीतों की तरह आपके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आगे बढ़ते हैं और वैसा ही एक और गीत सुनते हैं, जहां कौन है देखिएगा, शायद दिलीप कुमार साहब की उंगलियां थिरक रही हैं। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम अंदाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और नौशाद साहब की धुन।

जी हाँ, हमारे श्रोता लिखते हैं कि अभिनव अन्वेषण की पर्याय बन चुकी जोशी साहिबा का ये इबारत पूर्ण रूपेण कार्यक्रम अनुरूप है, जो सफर को सुरीला और नशीला बनाएगा। साज बिन आवाज अधूरी, यंत्र बिना मंत्र अधूरा, आवाज को अंजाम हासिल करने में इन यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आदिकाल से पूजा आदि शुभ कार्यों और समारोह में इनका सम्मान होता आ रहा है। चाहे शंख हो, घंटी की ध्वनि हो, ढोलक हो, मृदंग हो, तबला हो, उसकी थाप हो, वाद्य यंत्र हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आज के प्रसंग में पियानो और वायलिन का जिक्र है तो मन के शून्यता को पूर्णता प्रदान करने में सफल मानी जाती है। साज और आवाज से सज्जित सफर का बेसब्री से इंतजार है। तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर में जिस वाद्य यंत्र की बात हो रही है वो है पियानो। हिंदी फिल्मों में दिखाई गई ये वाद्य यंत्र अक्सर अमीर घरानों के घर की शोभा होती थी। प्यार में धोखा या बेवफाई के कारण हीरो और हीरोइन अपना दर्द इसी पियानो के साथ बांटते नजर आते थे। आपने गीत का जिक्र भी किया है, देखिएगा ये गीत हमारी प्लेलिस्ट में है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज क्या टेक्स्ट पढ़कर लग रहा है, वो साहस कोई और नहीं, पियानो हो सकता है। ये हमारा मानना है।

0: खुशी और गम दोनों मौके पर हीरो या हीरोइन द्वारा अपनी खुशी या गम व्यक्त करने के लिए इस साज के साथ गाते देखा गया है। जैसे कि फिल्म अनाड़ी का इन्होंने गाना लिखा है, अनुपमा का, और भी बहुत सारे गाने इन्होंने आज लिख दिए हैं। हो सकता है आपके गाने हमारे गानों से मेल खाएं। बताइएगा कितने गाने आपके गानों से हमारी पसंद मिली है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर में आपने बहुत सुंदर विषय चुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इबारत केवल एक वाद्य यंत्र की चर्चा नहीं करती, बल्कि हिंदी सिनेमा की उस भावनात्मक विरासत को याद दिलाती है, जहां सुर संगीत और संवेदनाएं एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं। जब पर्दे पर कोई नायक या नायिका अपने मन की अनकही बातों को शब्दों से नहीं बल्कि किसी वाद्य यंत्र की मर्दो धुनों के सहारे व्यक्त करता है, तब वो संगीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस भी होता है। उसकी मीठी तान कभी प्रेम की कोमलता बन जाती है, कभी विरह की कसक और कभी अकेलेपन की मौन व्यथा। बहुत सुंदर जी। तो अगला गीत हम आपको सुनवाएं, इससे पहले हमारे दो सवाल बिल्कुल सीधे साधे। पहला सवाल तो यही कि पियानो से जुड़े गीत बताइए जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप कौन कौन से गीतों का जिक्र करने वाले हैं बताइए, कौन कौन से ऐसे गाने हैं जहां नायक या नायिका इस वाद्य यंत्र को बजा रही हैं और गीत गाए जा रहे हैं। हो सकता है आप जो गीत लिखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट से, हमारे पसंद के गीतों से मेल खा जाए। और हमारा दूसरा सवाल, क्या आपने कोई वाद्य यंत्र सीखा है? अगर हाँ तो कौन सा? जैसे हमारे एक श्रोता ने कहा है कि उन्होंने वायलिन सीखा है और उनके बेटे को भी उन्होंने वायलिन सिखाया है, तो आप भी बताइए अगर आपने कोई वाद्य यंत्र सीखा है तो कितना सीखा, कितने साल सीखा, और अब आप उसे बजाते हैं कैसा महसूस करते हैं? कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात। अगला गीत सचिन देव बर्मन की संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम तीन देवियां। बताइएगा इसमें देवानंद तो वाद्यंत्र के साथ हैं यानी पियानो बजा रहे हैं, सामने खड़ी हैं सिमी ग्रेवाल और ठीक पीछे कौन सी नायिका खड़ी उनका इंतजार कर रही है यानी उस गाने को सुन रही है।
1: हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी

तरह शाम का हो गुमा सुबह पे, जिस तरह शाम का हो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि देवानंद के साथ सिमी ग्रेवाल हैं और कल्पना मोहन हैं। बिल्कुल इस फिल्म में नंदा भी है, लेकिन इस गाने में नंदा जी नहीं खड़ी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि साज के साथ गीत और भावनाओं का संगम लेकर आया है आज का सुरीला सफर। साज वो दर्पण है जिसमें शब्द अपनी भावनाओं को निहारते हैं। साज वो आधार है जिस पर गीत अपनी उड़ान भरते हैं। जहां केवल शब्द अधूरे रह जाते हैं, वहां ये उस भाव को पूरा कर देते हैं। गीत अगर मौन की भाषा है तो साज उस भाषा की आवाज है। इस बात पर पियानो, गिटार, बांसुरी, सितार और कई पाश्चात्य वाद्य याद आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत गीतों का खजाना दिखाई दे रहा है। आपने कौन सा वाद्य और गीतों की मोती चुन लिए, अनुमान लगाना मुश्किल है। फिर भी कुछ गीत आपने लिखे हैं तो सुनिएगा, बताइएगा क्या गीत आपके हमारे गीतों से मिल रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो के साथ साथ शायद हारमोनियम भी आज के गीतों में है। तो वैसे तो हमने कहा ना कि पूरे गीत में कई वाद्य यंत्र बजते हैं, लेकिन फिल्मांकन करते समय पर्दे पर जब हम देखते हैं तो नायक या नायिका उस पियानो के पास बैठे हुए बजाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उन गानों को आज हमने चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इट्स पियानो, सो मैनी सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड ऑन पियानो इन हिंदी सिनेमाज। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में जहां नायक नायिकाएं हाथ में कोई वाद्य यंत्र लिए गाते थिरकते नजर आते हैं, लेकिन पियानो की धुन पर सजी महफिल में गाती नायिका या नायक का गाना खुशियों में डूबा या उदास लम्हों को संजोए हुए है। दिल की भड़ास निकालते गीतों का क्या कहना, जहां तो बज रही है लेकिन सामने बैठी माशुका विलेन के साथ ठिठोली करती उसे जला रही है और आशिक को बाहर चले जाने को मजबूर भी कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो में आज सिर्फ एक वाद्य यंत्र को नहीं समझा जाए बल्कि भावनाओं का अनुवादक रहा है ये। जब नायक या दिल टूटा हो, जब प्रेम अधूरा रह गया हो, जब यादें बेचैन कर रही हो या जब अपनी तन्हाई से बातें कर रहा हो कोई, तब अक्सर उसे पियानो पर गाना गाते दिखाया जाता है। पियानो की मधुर और गहरी धुनें मन के दर्द को शब्दों से भी ज्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है। आपने एक गीत का जिक्र भी किया है, शायद वो गीत आप सुन भी लें इस कार्यक्रम में, है ना।

चलिए आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। आगे एक श्रोता का कहना है कि आज का सुरीला सफर वास्तव में सुरीला होने वाला है, क्योंकि इबारत पढ़कर मुझे लगा कि आज वॉयलिन की बात होने वाली है। जहां तक मेरा सवाल है, हम भी अपने आप को संगीतकार समझते थे और इसी धुन में वॉयलिन की क्लास भी लगा ली, पर कुछ खास नहीं कर पाए। बहुत वर्षों पश्चात बेटी को भी वॉयलिन की क्लास लगवाई और उसने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। चार परीक्षाएं पास करके काफी कुछ बजाया है, लेकिन आम तौर पर जैसा होता है हम मध्यम वर्गीय परिवारों में कि नौकरी को वरीयता दी जाती है, समय अभाव के कारण वो भी इस क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। आपने बिल्कुल सही कहा कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिखकर चाहे LDC UDC बैंक में काम कर ले या बाकी दूसरी पोस्टों पर चला जाए, लेकिन एक साज को लेकर वो उसे अपना शौक नहीं बनाए या उस पर अपना कैरियर नहीं बनाए, है ना। इस तरह की सोच में अक्सर बहुत सारे कलाकार छूट जाते हैं बहुत पीछे। अगला गीत लेते हैं, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में है, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। जी हाँ, जॉय मुखर्जी और आशा पारिक की जोड़ी, देखिए कैसे बजता है ये वाद्य यंत्र। जॉय मुखर्जी इसे बजा रहे हैं।

जी, तो आज हम वाद्य यंत्र के रूप में आपको पियानो की विभिन्न धुनें भी सुना रही है, इस पर भी ध्यान कीजिएगा, है ना, गौर फरमाइएगा। और हाँ, हमारे एक श्रोता ने ध्यान दिलाया है कि जो वाद्य यंत्र है पियानो पर, आशा पारिक बैठी हुई थी और जॉय मुखर्जी सामने है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वही एक श्रोता लिखते भी है कि फिल्म में पियानो इस तरह का साज है जिसमें नायक या नायिका अपने दिल के जज्बात को व्यक्त करता है। वही एक श्रोता लिखते है कि आइए मेहरबा बैठिए जाने जा जैसे ओपी नैयर का संगीत है जिसमें लकड़ी के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है, वो बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से बहुत सारे गाने हैं जहां पर सपेरे की बीन की आवाज है। गीत तो बहुत सारे हैं जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे गिटार, वायलिन, ढोलक, तबला आदि का प्रयोग किया जाता है। मुझे तो आपकी पसंद के गीतों का इंतजार है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज लग गया है 440 वोल्ट का झटका। अरे क्यों भाई, समझ नहीं पड़ रहा, क्योंकि अकेले नायक नायिका जब गाते हैं तो ज्यादातर दुख भरे गाने होते हैं या उम्मीद भरे, दोनों में गिटार या पियानो का उपयोग होता है या कभी कभी बांसुरी भी, अनुमान लगाकर कुछ गाने लिख रहा हूँ। तो देखिएगा ये गाने हमारे गाने से मेल खा रहे हैं क्या, मुझे लग रहा है कुछ गाने तो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत अलग सी थीम लेकर आप आती हैं, जरूर सुनेंगे नई जानकारी और मधुर गीतों के साथ आपको। जी जरूर सुनिएगा, आपके लिए तो ये सफर है जहां आप हमारे साथ और मेरे साथ होते हैं, खास है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी दुल्हन बनाकर पियानो पर ये गीत गाया जा रहा है। और रफी साहब की आवाज ने तो इस गीत पर जान ही लगा दी है, इस गीत पर जान ही लगा दी है। अच्छा, आपने जीत लिख दिया है, गलती से कुछ आपका टाइप हो गया है और ये गीत आपको बहुत पसंद है, तो सुनते रहिए कार्यक्रम, कहीं ये गीत आपको सुनने को मिल सकता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे अंदाज से पियानो के साथ फैलाए गए गीतों की बौछार होगी, नायक नायिका के मनोभावों को व्यक्त करते हुए पियानो की तरंगे हैं, किसी को सुनने को मजबूर कर देती हैं, चाहे उदासी हो या खुशी का माहौल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्र केवल गायक के सहायक नहीं होते गायन के, बल्कि ये संगीत के प्राण, लय और सुर के मुख्य आधार होते हैं। ये रचना को गहराई, सौंदर्य और पूर्णता प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और क्लासिक विचार आप सभी हमें लिखकर भेज रहे हैं। जी, तो हमारे दो सवाल आपने नोट कर ही लिए हैं। कुछ श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं कि पियानो से जुड़े कौन से गीत हैं जो आपको याद हैं और वो हमारी प्लेलिस्ट से हो सकता है मेल खा जाएं, या वो गीत जो आपको पसंद हो बताइए, जहां नायक या नायिका की उंगलियां पियानो पर थिरक रही हैं। और हमारा दूसरा सवाल कि आपने अपने जीवन में कोई वाद्य यंत्र सीखा या आपके बच्चों ने सीखा तो उसका जिक्र कीजिए। और हम लेते हैं अगला गीत अगले सफर की ओर। रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, महेंद्र कपूर की आवाज और फिल्म का नाम हमराज। यहाँ पर सुनील दत्त साहब बैठे हैं वाद्य यंत्र के पास और उनकी उंगलियां थिरक रही हैं।

मुझे लगता है कि आज पियानो पर जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे दोस्तों की यानी हमारे साथियों की उंगलियां भी थिरक रही होंगी। क्यों थिरक रही है ना, पियानो की तरह। हाँ, पियानो पे मेरा मतलब है, क्योंकि हर गीत के साथ हम आपको एक पियानो की धुन भी अलग से सुनवा रहे हैं। और आज का ये सफर बहुत ही क्लासिक हो रहा है, मैं ऐसा समझती हूँ। आप क्या सोच रही हैं मुझे बताइएगा। बाकी आज जो हमने दो सवाल आपसे पूछे हैं, हमारे श्रोता फटाफट हमें जवाब दे रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी लड़की थी दिलवाले का और मेरी जंग जीत जाएंगे हम, इसमें पियानो का इस्तेमाल हुआ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म अनुपमा का धीरे धीरे मचल और ब्रह्मचारी का दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, क्या बात है। तो हो सकता है आपकी पसंद हमारे पसंद से मेल खाती हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राम और श्याम का और आदमी और ब्रह्मचारी फिल्म के गीत जो हैं पियानो से जुड़े हुए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी संगीत प्रेमी श्रोता बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक नायाब म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स और वाद्य यंत्रों को बजाने वाले नायाब कलाकार हुए जिन्होंने हमें शानदार गीतों का खजाना दिया है। सोचो अगर ये सारे म्यूजिक वाद्य अच्छी तरह से बजाए न जाएं तो गायक कलाकार की

भी अच्छी आवाज क्यों न हो अच्छा गीत नहीं बन सकता था, इसलिए सभी बजाने वाले साजिंदों को हम नमन करते हैं। बिल्कुल सैल्यूट देना चाहिए हमें उन सभी संगीतकारों को, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे 1960 से 1995 तक का संगीत बहुत ही पसंद है, और एक श्रोता ने तो पियानो के प्रकार लिखा है कि अपराइट पियानो इसका भजन 175 वजन इसका 175 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक होता है। अच्छा क्या ग्रैंड पियानो का 300 से 600 किलोग्राम तक होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो पर फिल्म वंदना का गाना आपकी इनायतें आपके करम आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हमें बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये गाना आज के सुरीले सफर में होना चाहिए। और वहीं एक श्रोता कटी पतंग का गीत बताते हैं और वहीं लिखते हैं प्यार दीवाना होता है गाने में पियानो का इस्तेमाल हुआ है। एक श्रोता लिखते हैं कि कैसी हसीन आज बहारों की रात है फिल्म आदमी का गीत है, और वहीं मधुबन खुशबू देता है दिल के झरोखों में तुझको बिठाकर धीरे धीरे मचल प्यार दीवाना होता है मैंने तेरे लिए ही ख्वाब हो तुम। बहुत सारे गीतों को हमारे श्रोता ने लिखा है और आपकी पसंद हमारी पसंद से मेल खा रही है हुजूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं धीरे धीरे मचल ख्वाब हो तुम दिल ने प्यार किया एक बेवफा से चले थे साथ मिलके आपके हसीन रुख पे, बहुत सारे ऐसे गीत हैं। और वहीं एक श्रोता ने फिल्म धर्म कर्म का गीत एक दिन बिक जाएगा को पसंद किया है। एक श्रोता लिखता है कि संगम का गाना दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा ये भी गाना उसी से जुड़ा है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तबला सितार हारमोनियम और अकॉर्डियन पसंद है, स्कूल के दिनों में 3 महीने हारमोनियम सीखा पर ये छूट गया, अब कुछ साल पहले हारमोनियम खरीदा है और समय समय पर बजाती भी रहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी वाद्य यंत्रों को लेकर इतने इतने संवेदनशील हैं, इतने मार्मिकता आपके भीतर है और इन यंत्रों के बारे में आप भी बहुत सूक्ष्म

कोई भी वाद्य यंत्र नहीं सीखा, मुझे बहुत अफसोस है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती पर सुरीला सफर, जिंदगी गुजर रही है बेफिक्र, मजा आ रहा है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दो बदन का गीत मनोज कुमार पियानो बजाते हुए मोहब्बत हो गई जिनको, दीवाने कहां जाएं। रफी साहब की आवाज में दर्द भरा गीत, शकील बदायूनी की कलम से और रवि का मध्यम संगीत बड़ा कर्णप्रिय लगता है। हमें पसंद है ये गीत, बजना चाहिए। हमें तो साज बजाना नहीं आता, हाँ हमारा लड़का ढोलक बजाता है, जो जगह जगह जन संध्या, अन्य कीर्तन और स्थानीय कार्यक्रमों में जाता है। अच्छी बात है ना। वहीं एक श्रोता ने पियानो वादक जो है, मशहूर जैज पियानो वादक कीथ जैरेट के बात लिखी है। 1975 का उन्हें कोलोन कॉन्सर्ट की कहानी के बारे में एक बहुत लंबी चौड़ी बात लिखी है। इसी फिलहाल हम यहाँ नहीं ले पा रहे क्योंकि कार्यक्रम में समय बहुत कम है, लेकिन शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने आपने लिखे हैं, जिंदगी इत्तेफाक है और आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना, आपके हसीन रुख पे गुजरा जमाना, ये बहुत सारी गीतों का जिक्र किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई साज बजाना नहीं सीखा, लेकिन बचपन से विविध भारती को रेडियो पर सुनते सुनते आज ये दिन आ गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत आपने लिखे हैं, चेहरे पे खुशी छा जाती है, दोस्त ना रहा, धीरे धीरे मचल और पत्थर के सनम, और इसके अलावा तू कहे अगर अंदाज का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बांसुरी, माउथ ऑर्गन और गिटार बजाना सीखा, काफी दिनों तक अपने विद्यालय और महाविद्यालय में कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाद में मुझे मेरे बड़े भाई साहब ने कैसियो का कीबोर्ड, जो उस समय बहुत शुरू हुआ था, नेपाल से

हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे सूरत में रोज मेरी नामक एक रेस्टोरेंट के वेटिंग एरिया की फ्लोरिंग पियानो थीम पर बनाई गई है। कांच के व्हाइट और ब्लैक पट्टे पर चलने से अलग अलग लाइटिंग के साथ म्यूजिक बजता है, बहुत ही रोमांचकारी नजारा होता है। ये वीडियो नहीं अपलोड होता वरना मैं दिखाता, क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सरोद सीखना चाहता था पर हसरत ही रह गई।

हालांकि छोटे भाई ने सितार सीखा है। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाना जानता हूं। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे खैर गानों का इन्होंने जिक्र किया है और एक श्रोता ने कहा है कि मैं हारमोनियम बजा लेता हूं और तबला भी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमने वायलिन सीखा है 4 साल तक, पर अब हम बहुत कम बजाते हैं, अब थोड़ा भूलने भी लगे हैं। अरे भूलिए मत, उसे अपने जिंदगी में शामिल कीजिए। और अब हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। जी हाँ, शम्मी कपूर साहब फिल्म ब्रह्मचारी के लिए और मोहम्मद रफी और लता साथियों की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी की रचना है

जी हाँ, उदास तो बिल्कुल भी नहीं होना है और जिंदगी का ये सुरीला सफर यूं ही कट जाएगा हंसते हंसते। इसी उम्मीद के साथ अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

साथियों, मौसम चाहे कोई भी हो, प्रकृति का सर्वाधिक सुंदर रूप धूली निखरी ओस से भरी शीतल सुबह में होता है। हर एक सुबह का अपना ही सौंदर्य है। स्वच्छ ताजी हवा और सूर्य की पहली किरण का स्पर्श हमसे कहता हुआ प्रतीत होता है, जागो मोहन प्यारे, भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत हो। रात्रि के अपने विश्राम कक्ष में जाते ही सूर्य का रथ गतिमान हो उठता है और हम सभी निर्मल मन के साथ नई सुबह के कोरे पन्ने पर एक नए दिन का संकल्प लिखते हैं और मुड़ जाते हैं अपने जीवोन्मुख कार्यों की ओर।

हर नई सुबह हमारे लिए जागरण का संदेश होती है। एक नई आशा, नई उम्मीद के साथ हमें कर्म पथ पर चलने का हौसला देती है। सुहानी सुबह के अद्वितीय सौंदर्य में हम शांत मन से प्रकृति के नैसर्गिक संगीत को सुनते हैं। ठंडी शीतल सुबह में सूर्य की किरणों के स्पर्श से खिलते फूलों की सुगंध और पंछियों की चहचहाहट हमें ऊर्जावान बनाती है। फूलों की तरह खिलती महकती हमारी सुबहें हमारे जीवन को नित नई दिशा देती हैं। एक

0: हमारे जीवन में उल्लास भरती, खुशियों की उजास लिए सुहानी सुबह हमारी आस का वो तारा बनकर चमकती है, जो हमें हमारे सपनों की राहों पे चलकर एक नई पहचान, नया आशियां बनाने को प्रेरित करती है, हवाओं पे एक नई कहानी लिखने का हौसला देती है। जागो, उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो।
1: सुन

साथियों, हर सुबह एक नई आस को जन्म देती है और इस आस को हम जिंदगी कहते हैं। अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मोंटेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर गट रीत गया, 1 बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण बेहद, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, 1 वर्ष।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट

0: मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
1: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
2: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
3: The global south should be enabled.
4: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

फिल्म बाबर का गीत था, आवाज सुधा मल्होत्रा की थी, गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज बनाई थी रोशन ने।

ये स्वर है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की फिल्म का नाम है मेरा घर मेरे बच्चे। रचनाकार हजरत जयपुरी, संगीतकार सरदार मलिक।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए प्रेम धवन का लिखा गीत, हंसराज बहल का संगीत, आवाज मुकेश की, और ये फिल्म है मुड़ मुड़ के नातिक।

0: रुको रुको हवा।
1: कार्यक्रम का अगला गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में शमीम जयपुरी का लिखा हुआ, आवाज एक बार फिर मुकेश की, और ये फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वल्लाह क्या बात है। जी हाँ, यह है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। इस गीत को प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत रोशन का है।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, स्वर हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के, फिल्म का नाम है अपना घर।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: हाल बहुत अच्छे हैं।
1: देखिए बारिश की बूंदें पड़ गई है मुंबई के सरजमी पर और
2: मुंबई के अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ छुटपुट बारिश की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बारिश के बाद जब फिर से धूप निकलती है ना

0: तो बारिश का मजाक किरकिरा कर देती क्योंकि उमस बहुत ज्यादा हो जाती है।
1: बस जब बारिश होती है तो हमें इंतजार रहता है कि नदियां भर जाएं, तालाब, झरने और कलकल बहने लगे, मतलब ये लगता है कि पानी पानी चारों तरफ दिखाई पड़े। और जब ज्यादा बरसात होती है तो हम परेशान भी होने लगते हैं, तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इस बार संतुलित बारिश हो। और आज विशेष तौर पर हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाह रहे हैं कि आज एक विशेष दिन है, नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस
0: जी।
1: तो ये वैसे हमें रोज इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस दिवस के बहाने हम लोगों को आगाह करते हैं कि जो हमारे मछुआरे हैं, नदियों में जाते हैं, समंदर में जाते हैं, मछलियां पकड़ने जाते हैं
0: जी,
1: तो उनकी उनकी सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, कितनी सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है, घर परिवार वालों की, समाज की। और दूसरा कि जब आप इस नौका विहार के लिए जाएं और नाविक का काम, मतलब मछुआरों का काम करने जाते हैं, तो पहली शर्त यह है कि तैरना आना चाहिए, कि बिना तैरे नदी में छलांग न लगाएं कि हम।
0: वैसे भी जब हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं जहां नदी, झील, झरने ऐसी चीजें होती हैं, और वहां पर जब हम नाव के लिए जाते हैं तो सुरक्षा के तौर पर हमें एक जैकेट दिया जाता है पहनने के लिए कि अगर कभी कुछ दुर्घटना हो तो वहाँ आप सुरक्षित रहें। लेकिन उसके अलावा एक नाविक इस तरह का मौजूद हमेशा रहता है कि अगर कोई दुर्घटना हो तो अधिकतम लोगों को वो बचा सके, और बहुत ही उनकी कठिन जिंदगी होती है, उनके बारे में लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता हो, इसीलिए इस तरह के खास दिन जो है वह मनाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है कि जब नौका विहार के लिए लोग निकलते हैं तो बहुत सारे जो नाविक होते हैं वो नाव पर जहाँ पर ये सुरक्षा जैकेट नहीं देते हैं
0: जी,
1: कम होते, दो चार होते हैं और 15-20 लोगों को बिठा देते हैं
0: जी,
1: तो ये बहुत खतरनाक होता है। जो लोग बैठते हैं कहीं पैसों की बचत के चलते, कहीं समय की बचत के चलते बैठ जाते हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी ज़्यादा कीमती है, न कि आपके धन की धन। तो ये ध्यान रखें, अक्सर किसी जगह पर जब जहाँ पर कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी होती तो अमूमन ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि फला जगह पर नौका डूब गई, तो ये ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस तरह की आपदाएं अब कम हो रही हैं क्योंकि सरकार की ओर से भी मुहिम चलाई जा रही है कि एक तो सुरक्षा जैकेट बहुत ज़रूरी कर दिया है और जगह जगह पर उनकी टीम काम करती है, नदियों में जाती रहती है कि कहीं ऐसी दुर्घटना हो तो उन्हें बचाया जा सके।
0: तो इससे जुड़े कोई अगर अनुभव है हमारे सुनने वालों के तो वो हमें लिखकर अवश्य भेजें। इसके अलावा आज जिन विषयों पर बातचीत हम करने वाले हैं, हम बता दें कि अगर आपने घर में कुछ पौधे लगाने के आप शौकीन हैं या आप कोई खेती भी करते हैं तो कीट जो लग जाते हैं, जो कुछ कीड़े हैं ना जो लग जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके घरेलू पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आज तो हम सिर्फ घरेलू पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। आपने घर में अपने गार्डन छोटा सा बगीचा बनाया, छत पर एक बगिया बनाई है, तो उनको बचाने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे सुनने वाले ज़रूर हमसे साझा करें। और शादी ऐसा बहाना होता है जब बहुत सारे सगे संबंधियों से मुलाकात हो जाती है हमारी, कई बार तो हमें शादी में जाते ही इसलिए हैं कि अरे वो मौसी आएंगी, वो मामा आएंगे, वो ताऊ आएंगे, या उनके बच्चों से मुलाकात नहीं हुई होती है तो उनसे मिलना जुलना भी हो जाएगा
1: और बहुत सारे दोस्त मित्र मिलेंगे तो चलते हैं, और वो जो इकट्ठे टीम बना के दल बना के जाना वो एक अलग अनुभव होता है क्योंकि अमूमन अकेले अकेले ही जाना होता है, लेकिन शादी ब्याह में कई टीम बन जाती है। भाई दफ्तरों से भी जब लोग किसी की शादी में जाते तो कहाँ मिले, फला जगह पे मिलते हैं और सब झुंड बना के जाते हैं, तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के इस मामले में क्या अनुभव है कि वो जब शादी ब्याह में जाते हैं तो उन्हें किस तरह की फीलिंग होती है, कौन सा एहसास होता है, उन एहसासात को यहाँ पर साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
0: और आज होगी कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत जिनका परिचय हम करा रहे हैं ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई। तो बातें विस्तार से होंगी लेकिन ममता जी एक गीत पहले सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, आज हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत, ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं।
1: और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया और 1 जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई और उनका जहां जन्म हुआ था समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहाँ के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी।
0: बिल्कुल, और रमीला बेन ज्ञान की प्यास उनमें थी और कुछ कर दिखाने का जुनून ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जिस जहां वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी दी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीला बेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गांव में उचित शौचालयों का अभाव था, खुले में शौच करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी और खासतौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियां थीं उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते थे इस चीज़ से। शौच के लिए रात होने का इंतज़ार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी।

और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी ग्रामीणों को, जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि

0: संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी।
1: और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की इस संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी। और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का माध्यम भी बने।
0: इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया। और रमीला बहन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भाव, जो ये भाव था उसको बढ़ावा दिया।
1: रमीला बहन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज्यादा थी कम हुई और जो धन का अभाव था वो भी बढ़ा क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को, ग्रामीण लोगों को। और उनके अथक प्रयास के से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे मुक्त हुए और जो बीमारियां थी निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की जरूरत नहीं थी।
0: और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थी अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थी। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को। और इन गाँवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गाँवों के बच्चे खासतौर पर लड़कियां अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थी।
1: बिल्कुल सही बात है। रमीला बहन गुजरात में एक सेविका के रूप में उभरी और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 2002 में पद्मश्री के अलावा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए,
0: ममता जी मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगी, 2022 में उन्हें मिला।
1: 2022 बिल्कुल सही कहा आपने। और 2017 में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नारी तू नारायणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनका नाम दृढ़ता और बदलाव का पर्याय बन गया।
0: और उनकी ये जो कहानी थी, जो कार्य उन्होंने किए, वो बहुत सारी महिलाओं को के लिए आगे बढ़कर अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत सारे गांवों को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए जो उनका जुनून था इसने उन्हें पहचान भी दिलाई और सम्मान भी दिलाया। और रमीला बेन अब तक गुजरात के करीब करीब 700 से ज़्यादा शौचालय वहाँ पर वो बनवा चुकी हैं या मदद की है उन्होंने, हम ऐसा कह सकते हैं। और उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और ये साबित करती है कि एक बदलाव छोटा से छोटा कदम भी अगर है, अगर अटूट संकल्प है तो वो उसी से शुरुआत उसकी होती है।
1: बिल्कुल। अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को।

0: चंचल जी, देखिए शादी ब्याह केवल दो लोगों का मिलना नहीं होता, मिलन नहीं होता, बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही हैं, फलानी चाची आ रही हैं, फलानी जगह
1: कोई मतवाला आया मेरे द्वारे ही होता है।
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी, पुरवा वाली भाभी और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे जगह जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: जयपुर वाली चाची, आगरा वाले ताऊ जी।
0: कई बार तो भाभी और चाची कर वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही है, देखिए ना राजस्थान वाली आ रही, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है।
1: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मजा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीज़ें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी जो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊ जी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी ब्याह में जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा,
0: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना बाथरूम चाहिए, और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी टाइम पे नाश्ता चाहिए, वही दायरा उसी दायरे में सिमट कर रह गए। और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी वाली चाची, कौन सी वाली बुआ, तो उनको पता ही नहीं है कि फ़ोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है कि पढ़ाई विघ्न आता तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं अगर दूसरे शहर में शादी,
1: अगर कोई
0: है तो।
1: बहुत जरूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधा

0: की वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा जिद करके बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहां उनके सहकर्मी हैं वो।
1: अच्छा, अब जरा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्यौहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है?
0: बिल्कुल,
1: हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ

0: कितने बड़ा बड़े हो गए,
1: बड़ा हो गया हमारा बेटा, बड़ी हो गई हमारी बिटिया, तो ये सब होता है। और समय का अंतराल कई बार कुछ चीजों को विस्मृत कर देता है, जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताजा हो,
0: कई बार कुछ कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष,
1: ज्यादा अमीर हो गई हो, ये भी होता है। अब ज्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं, एक गाना सुनवाते हैं।

0: जाने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा

0: मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली, और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं, तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं, और फिर शादी बीत जाती है लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं, कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती है जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
4: अब इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी खड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोबल, और फिर सब एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था, हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे, मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, बचपन की यादें ताजा हो गई, संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई, बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला, और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर, कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है, और रात को जो महलूल होता है अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के साथ।
4: लेकिन जब नहीं पहुंच पाते हैं उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना, बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत खराब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी के बहाने मिल तो लेते लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादियां पधारें। पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है।
1: इनका कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, बच्चों के इम्तिहान है, दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने के लिए, ठीक है उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत ना करें।
4: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष होता शामिल होते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है, बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहां हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपनी अपनी जगह पर

बैठे हुए थे। सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे। रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी। वहां पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी। मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी। अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना। मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपने किसी सहेली के बारे में बोल रही हैं, पर वे मुस्कुरा कर रह गईं और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए। आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते। वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं कि हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो

0: खाने पीने का नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे, तो लगता है।
1: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीजें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको एक हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है।
0: अमूमन ऐसा होता है।
1: चलिए फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मजे की बात चल रही है, तो गाने सुन ले।
0: सुनते हैं।

0: भाई ममता जी शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है, सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई, बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सब

0: से मजा आता है। संगत में पत्तल में बैठकर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताज़ा कर दी।
1: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते ही इसलिए हैं कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहां पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद ही होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थापर, बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल रिश्तों को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोहों में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है जिससे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है।
0: हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा कि बात कुछ साल पुरानी है। हम एक शादी में गए थे, हमारे बगल में एक कपल बैठे हुए थे, उनसे औपचारिक बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन आई और कहा भाई बहन में दोस्ती हो गई। मैंने पूछा भाई बहन, तब उसने बताया कि ये तो हमारे भाई भाभी हैं, मैं परिवार में छोटी हूँ, मेरी मुलाकात उनसे ना के बराबर हुई और मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो मेरे बचपन का चेहरा और आज का चेहरा चेहरे में बहुत फर्क आ गया है, इसलिए भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। फिर तो बातों का सिलसिला जारी रहा कि बस ये मुलाकात यादगार बन गई। भाई आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी जमाना है। अगर आपको फुर्सत नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें।
1: और कई बार ऐसा होता है ना कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं, जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि आज की भागदौड़ भरे जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकालकर एक दूसरे से मिल सकें और उनका हालचाल बताएं या दूसरों की सुने। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दी गई, उसके जवाब में लिखा है, अभी अभी ये टिप्पणी आई है 6 मिनट पहले, इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज्यादा उसकी इज्जत हो रही तो मेरी तरफ नहीं दे रहा, ये भी लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं, उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तू ये पहनने वाली है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मजेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया, आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी, हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मजे किए, डांस किया, बाद में फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सब ने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
1: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते। ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहां जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं।
1: और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और उस पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है, इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज़्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, 2-4 वो कई किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।
0: और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घोल बना ले, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को

0: दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी न दें, उनमें संतुलित खाद का प्रयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें।
1: और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनके पीछे छुपे हुए जो कीड़े और अंडे होते हैं उनको हाथ से ही हटा देना चाहिए, ऐसा एक कमेंट में लिखा गया है। और भौतिक बाधा कीड़ों तक पहुँचने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे पौधे,
0: पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं। हाँ, मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं ताकि वो जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है ताकि वो पकड़ने में मदद मिले।
1: इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुँचाई है। और हम अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80-90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जो सप्लाई चेन है जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ख़ास तौर पर जो भी वस्तुएँ हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुँचाया जाता है।
0: बिल्कुल, और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के भी चले जाते हैं, तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फोन वहां तक नहीं पहुंचता है, तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। तीन तीन चार चार दिन, कई बार महीनों तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है।
1: बिल्कुल, इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए और समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके, इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं।
0: और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: ये था आरजू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज थी। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चिड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है? चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अजी बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अजी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं चूड़ी पहन लो। अच्छा। घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
1: जी।
0: अच्छी बात है।
1: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
0: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं, तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
1: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
0: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार?
1: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी हैं वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको, कांच को?
0: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
1: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नुचकारती है फिर चूड़ी, फेंचा नुचकारती है मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
0: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, दो देखता हूँ जी मैं तो।
0: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
1: दो जो देखता हूँ, जोड़ा ही भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ा ही मैं दे रहा।
0: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बताइए अपनी पसंद का गाना।
1: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफी की, गाने के बोले ये है तुमन्ना तेरे घर के सामने।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी मैं जीतन यादव बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा, क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा, सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं मैम, दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है, विविध भारती का साथ है।
0: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
1: जी जी,
0: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
1: जी जी, और अन्य लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं और खासकर हेलो फरमाइश सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
0: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
1: जी।
0: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर ले और सुने।
1: जी मोबाइल पे सुनते हैं, पर दुकान पे ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
0: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको फरमाइश कार्यक्रम?
1: अच्छा लगता है।
0: क्या अच्छा लगता है इसमें?
1: दोस्तों को श्रोतन को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं सुनने, बड़ी बात।
0: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना?
1: जी।
0: तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मजबूर कलम का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम जिम बरसता जी बाहर पानी अंदर जी आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमा।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार। अरे आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम, आपकी आवाज से पहचान जाते हैं।
0: अरे तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं, है ना?
1: जी मैम।
0: नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया है मैम।
0: अच्छा,
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम, अभी तो हम भट्टों में काम करते थे राजस्थान में।
0: अच्छा, राजस्थान में कहाँ?
1: जी भरतपुर में करते थे मैम।
0: और अब क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, 2-4 दिन हुए घर आए हुए अभी।
0: अच्छा, तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको, कैसा माहौल है वहाँ का?
1: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए अभी जाते जाते।
0: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
1: जी मैम।
0: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने से?
1: जी मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं, तो 8 महीना वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रास्ते ही सुनना चालू कर देते थे।
0: अच्छा, आपको टाइम मिल जाता था?
1: टाइम तो इतना रहता है कि हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका प्रोग्राम 1 बजे रात से ही चालू हो जाता, फिर सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था, करीब 10 बजे तक रात को।
0: क्या बात है, इतना प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी मैम, आपका सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
0: अच्छी बात है, आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
1: जी मैम, ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
0: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा।
1: जी

0: मैम उसमें मैथ का काम ज्यादा पड़ता है।
1: और उसमें से भी आप
0: हाँ
1: समय निकाल कर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात
0: नहीं
1: है।
0: वो तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता हमारा। जो सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं, पहले
1: अच्छी बात है।
0: सभी लोग सुनते हैं, फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, जब बिजली चली जाती तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
1: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: हेमराज जी के गाया हुआ गाना है, भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
1: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बाबूजी कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी। आप सुनाओ, आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी, क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में राम
1: अपने
0: बाबू जी।
1: ये ड्राई क्लीनिंग का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना? अगर
1: जी
0: हमारी
1: जी जी बिल्कुल
0: महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही
1: जी
0: होना
1: बिल्कुल।
0: है। बहुत अच्छा लगा आपसे
1: आज
0: बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है उसकी आवाज में, घर से निकलते ही कुछ दूर
0: चलते
1: चलते ही।
0: ही बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियां भी भेजी है मन चाहेगी
0: अच्छा चलिए सुने आपकी
1: इसमें।
0: पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश मंदाकिनी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी, मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय, कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पीले पीले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पीले पीले आएगी सुस्ती मड़ेगी सुस्ती, एक्ट प्याली पीले भाई पीले पीले, ओ सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पीले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन दे भाई सुन दे लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
0: क्या बात है,
1: और अंतरा सुनाया।
0: अच्छा जो लिखते हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
1: सूफियाना जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिलदे ने, सब सियाने मिलदे ने, ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिलदे ने चुप कोई कोई, तांदा मेला मंदा मेला, तांदा मेला मंदा मेला, ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिलदे ने ते कमला कोई कोई।
0: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली मुलाकात में फिर आपसे कोई नया गीत सुनेंगे, बताइए।
1: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवियों तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: परम मालवीय दीदी, प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम है शारदा
1: जी,
0: तो आपका ये नाम किसने रखा?
1: मेरे पिताजी ने रखा है, और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
0: बिल्कुल, वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता दिया है।
1: ये मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता, गोरा चिट्टा रंग था मेरा और भोला सा चेहरा मासूम सा, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझ के दोस्ती करते थे कि ये लड़की जरूर होगी, लड़के की भेष में रहती है।
0: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती है ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा कुमारी नहीं है।
1: सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछे सब हो गई हैं, तो लोग बाग जानते हैं।
0: क्या करते हैं शारदा जी?
1: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है, चुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मलिक का संगीत है। गीत के बोल हैं, पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मंदाग्नी जी बोल रही है?
0: हाँ जी, हाँ जी
1: जी जी, गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेला राजगढ़ द्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत अच्छे हैं, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
0: क्या बात, ये तो आप लोगों का प्यार।
1: और शायद मैंने दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
0: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे भी दीवाने हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, और हमारे श्रोताओं की वजह से ही तो देखिए ना आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
1: जी जी जी,
0: बताइए गजराज जी आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और इसके अलावा जो समर्सिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
0: आपके पास मतलब शॉप है?
1: जी।
0: अच्छा, आप करते हैं?
1: जी।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया,
1: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है विविध भारती। तो
0: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना, हो सकता है एक रोटी कम खा लेते होंगे, लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग।
1: नहीं भूलते हैं। जी जी जी,
0: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना।
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाय इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है अपने पिता की?
1: जी, पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती है और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए? या आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ, ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश हैं तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
1: कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते, रफी साहब की आवाज।
0: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी, जी।
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज तो कोई कहने के दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सूरत छुपा सकता नहीं, कितनी दिल

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए
1: जी। मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ जी।
0: सोनू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मीनाक्षी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी मैडम जी, क्या नमस्कार आपको।
0: सुनते हैं हमारे कार्यक्रम
1: जी। मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, बस क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं।
0: आप जवाब देते हैं उसका?
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको और मेरा नाम जुड़ा रहे भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो कार्यक्रम बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंडफादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम उनके कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे दादा की ये बिजनेस था और उनको बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण की हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। तो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम पेश करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितने भी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी में लाइक भी करता हूँ। तो आपने 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने
0: दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई
1: और आग जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं संतोष जी हाड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम चिड़ा कंजर डेरा देवास जिले से।
0: स्वागत है संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, शूट हो गया हमको, रेडियो सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम, बचपन से सुन रहे हैं जी। आज 44 साल की उम्र हो गई हमारी, और रेडियो समय से सुन रहे, जो सेल वाले शुरू स्टार्ट हुए थे।
0: कैसा लगता है रेडियो सुनने से, जिंदगी संवर गई आपकी?
1: रेडियो दीदी, हम है ना, हमारे फार्म हाउस पे मस्त सुना करते हैं, मजदूर काम किया करते हैं, और आपकी विविध भारती पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लाते हो, फोन इन कार्यक्रम लाते हो, और गाने पुराने सदाबहार जो सुनाते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: जी अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है तो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
0: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: दीदी जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है, खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रैक्टरों से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं मरता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, बिल्ली की दवाई उड़ाना पड़ता, बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना। उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को, सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
0: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
1: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है, इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगा दें तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगा दें जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करे तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन की मौत है हमारे इधर।
0: अच्छा, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
1: जी ये क्या है, सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है इसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है।
0: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, कि सोयाबीन की फसल लग जाए। अपने गाँव के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गाँव?
1: हमारा गांव बहुत सुंदर है, ऐसे तो हमारे गांव के पोहे और समोसे कचौरी बड़े फेमस है।
0: क्या बात है, पोहे और समोसे?
1: यस,
0: मुंह में पानी आ गया हमारे, देखिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमें एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो संतोष जी अब गाना बता दीजिए।
1: गाना है वो प्यार।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि हम अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे सकें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छाया की।
3: FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। संध्या के 5 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारी शेष रही सभा का विवरण और उनका प्रसारण समय।

शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। युवाणी में आज आप सुनेंगे चर्चा पढ़ने की आदत और ज्ञान का महत्व के बारे में। साथ ही चर्चा सुनेंगे राज्य व केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के बारे में। युवा श्रोताओं को सुनाया जाएगा फिल्म संगीत।

संध्या के 7 बजे से आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम बांग्लादेश ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। ये प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोतोयती हमारी क्षेत्रीय सभा के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है। संध्या के 5:05 हो रहे हैं। लीजिए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम गौधुली। गौधुली में आपको सुनवाने जा रहे हैं अनुराधा पुरवाल की आवाज में गाया ये भक्ति गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

श्रोता, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम गौधुली। गौधुली में अभी आपने सुना हरिओम शरण की आवाज में ये भक्ति गीत। अब आप आइए सुनवाती हैं आपको अगला भक्ति गीत।

श्रोता, उसके साथ ही फिल्म भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। FM 103.5 MHz पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। संध्या के 5:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त पुष्पा मेघवाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, शाम के 5:30 हो चुके हैं और हम हाजिर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पढ़ने की आदत और ज्ञान की महत्व के विषय में, और साथ ही आपको जानकारी देंगे राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती विषय पर, जो प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित है। और साथ ही हम बात करेंगे युवाओं में बढ़ती फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की समस्या के विषय में, और आपका मनोरंजन करवाएंगे कुछ फिल्मी नगमों के साथ। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का समय सूचना और तकनीक का युग है। हमारे हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसे हम हर तरह की जानकारी हमें केवल कुछ ही सेकंड में उपलब्ध हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल जानकारी होना ही ज्ञान है? और इसका जवाब है नहीं। किसी भी विषय के बारे में जानकारी होने और उसके विषय में हमें ज्ञान होने में बहुत अंतर होता है। जानकारी हमें केवल तथ्य बताती है, जबकि ज्ञान हमें उस विषय पर पूरी तरह से समझ विकसित करने में मदद करती है, जिससे हम जीवन में आगे कभी उस समझ का उपयोग करते हुए सही निर्णय ले पाते हैं। और यही कारण है कि पढ़ने की आदत आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की पहले थी। कहा भी जाता है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। जिस तरह से एक सच्चा मित्र हमें सही राह दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और मुश्किल समय में हमारा साथ देता है, ठीक उसी तरह से अच्छी किताबें हमारी सोच को व्यापक बनाती है, हमारे विचारों को सकारात्मक बनाती है और जीवन में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें और कठिन चुनौतियों में यही किताबें हमें मार्गदर्शन भी देती है, जिससे हम अपने ज्ञान और समझ और विवेक के आधार पर सही निर्णय ले पाते हैं और उन चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे पास जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जानकारी के इस विशाल समुद्र में सही और गलत की पहचान कर पाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और यही काम ज्ञान करता है। ज्ञान हमें केवल तथ्य ही नहीं बताता, बल्कि हमें उन्हें समझने और उनका सही उपयोग करने की क्षमता भी देता है। और युवावस्था हमारे जीवन का वह समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। इस उम्र में जो आदतें हम विकसित करते हैं, वही आदतें आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनती है। साथ ही हमारे भविष्य का जो आधार है, वह भी वही आदतें बनती है, और उसका भविष्य उतना ही उज्जवल होता है जितनी अच्छी किताबें वह आज पढ़ता है। अगर हम युवावस्था से ही अच्छी किताबें पढ़ना चालू करें और नया सीखते रहने की आदत बनाएं, तो यही आदतें हमें एक बेहतर भविष्य की नींव बनाने में मदद करेगी और साथ ही जीवन भर हमारी सफलता और प्रगति का आधार भी बनेगी। दोस्तों, हम सभी कई सफल लोगों को जानते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, चाहे वह

0: वैज्ञानिक हो, कोई बड़े लेखक हो, या फिर खिलाड़ी हो, या फिर कोई उद्योगपति हो। लगभग हर सफल व्यक्ति अपनी एक आदत समान रखता है और वह है लगातार किताबें पढ़ना और कुछ नया सीखते रहना, क्योंकि सफलता केवल डिग्री से नहीं बल्कि नियमित रूप से सीखने से भी मिलती है। लेकिन पढ़ना केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं होता, पढ़ना हमें जीवन को समझने में भी मदद करता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम अपने देश और समाज की अब तक की यात्रा के बारे में समझ पाते हैं। जब हम जीवनी पढ़ते हैं तो महान व्यक्तियों के संघर्षों और उनकी सफलता से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमारी कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता जैसे गुण हम में विकसित होते हैं। पढ़ने की आदत का एक और बड़ा लाभ है कि यह हमारी भाषा और अभिव्यक्ति की क्षमता को बेहतर बनाती है। ज्ञान का महत्व केवल करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान हमें एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने में भी मदद करता है। एक जागरूक और शिक्षित युवा अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर तरीके से समझ पाता है और वह समाज की समस्याओं को पहचानता है, साथ ही उनके समाधान के लिए अपने विवेक और समझ के आधार पर अपने स्तर पर प्रयास भी करता रहता है। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी कल्पना शक्ति विकसित होती है। जब हम नई नई चीजों के बारे में सोचते हैं, नए विचारों को समझते हैं और समस्याओं को अलग दृष्टिकोण से देखना सीखते हैं, और यही क्षमता हमें भीड़ से अलग बनाती है। एक पढ़ा लिखा और जागरूक युवा केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी अपना अहम योगदान देता है। ज्ञान हमें विनम्र बनाता है। जितना हम अधिक सीखते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और यही भावना व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने और खुद को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती रहती है। आज प्रतियोगिता का दौर है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही ज्ञान का होना भी बहुत ही आवश्यक है। जो युवा नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं वे बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना भी अधिक सक्षम तरीके से सीख लेते हैं और उनके निर्णय बेहतर होते हैं, और वे अवसरों को भी दूसरों की तुलना में सही से पहचान पाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ता। सफलता किसी मंजिल का नाम नहीं बल्कि लगातार सीखने रहने की यात्रा है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर दम कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। हम सभी को पढ़ने की जो आदत है उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहिए, और यही आदत हमारे उज्जवल भविष्य की ओर हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे हमारे अगले विषय पर। विषय है राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती, जो प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम से संबंधित है। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत और कुछ आवश्यक संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, गीत के बाद चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले विषय पर। दोस्तों, भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां मिलकर राष्ट्र की पहचान बनाते हैं। देश के विकास में सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना हमारे सरकार की जिम्मेदारी है और इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में

0: प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को केंद्र एवं राज्य सरकार की सेवाओं में उचित अवसर मिल सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य तरह की सरकारी संस्थाओं में भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को उपलब्ध अवसरों की जानकारी अधिक से अधिक पहुंचाने पर बल दिया जाता है। साथ ही उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार संबंधी योजनाओं के प्रति भी समय समय पर जागरूक करने के प्रयास किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी तरह का विशेष आरक्षण देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि योग्य उम्मीदवारों को अवसरों की जानकारी मिल सके और वे भर्ती प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सके। और इसके लिए समय समय पर रोजगार मेलों, जागरूकता अभियानों और कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन भी सरकार द्वारा किया जाता है। युवाओं के लिए इस कार्यक्रम का विशेष महत्व है। आज के दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को परीक्षा पर ध्यान देने के साथ ही सरकारी योजनाओं के अवसरों की भी जानकारी रखनी चाहिए। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य समुदायों की भागीदारी को बढ़ाने और प्रशासन अधिक समावेशी को बनाना भी है। जब समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शासन और प्रशासन का हिस्सा बनते हैं तो वे नीतियों का लाभ भी व्यापक रूप से समाज तक पहुंचाते हैं और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक शक्ति भी है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की लोगों को मुख्य धारा के विकास से जोड़ा जाए और केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती से संबंधित यह पहल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे हमारे अगले विषय पर। विषय है युवाओं में बढ़ती फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की समस्या। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं यह गीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
3: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

दोस्तों गीत के बाद चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज का युवा डिजिटल दुनिया में गहराई से जुड़ा हुआ है। स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जीवन को हम काफ़ी हद तक आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी आई है। ऐसी ही एक चुनौती है फियर ऑफ मिसिंग आउट की समस्या, जिसे हम फोमो भी कहते हैं। इसका मतलब है किसी महत्वपूर्ण अवसर, अनुभव, जानकारी या सामाजिक गतिविधि से वंचित रह जाने का डर। आज के समय में यह समस्या विशेष रूप से युवाओं में तेजी से बढ़ती जा रही है और उनकी मानसिक तथा सामाजिक जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रही है। सोशल मीडिया फोमो का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और अन्य प्लेटफॉर्म पर लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे पलों को साझा करते हैं और जब युवा इन तस्वीरों और वीडियो को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बाकी सभी लोग उनसे ज़्यादा खुश, सफल और रोमांचक जीवन जी रहे हैं और इससे ही उनके मन में यह भावना पैदा होती है कि कहीं ना कहीं वे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं या फिर वे उनसे पीछे रह गए हैं। फोमो का प्रभाव युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लगातार दूसरों के साथ तुलना करने के कारण उनमें तनाव, चिंता और असंतोष की भावना भी बढ़ जाती है और कई बार युवा अपनी उपलब्धियों को कम आंकने लगते हैं और दूसरों की सफलताओं को देखकर स्वयं को असफल और उनकी तुलना में कमतर आंकने लगते हैं और यह स्थिति आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है और मानसिक शांति को भी प्रभावित करती है। और यही वजह है कि आजकल अधिकतर बच्चे और युवा तनाव और डिप्रेशन आदि समस्याओं के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा फोमो युवाओं की दैनिक दिनचर्या को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। कई बार युवा बार बार अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं ताकि कोई नया संदेश, पोस्ट या फिर अपडेट छूट न जाए। इससे उनकी पढ़ाई, काम या फिर अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में भी ध्यान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कुछ लोग देर रात तक भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं जिससे कि उनकी नींद प्रभावित होती है और स्वास्थ्य समस्याएं भी काफ़ी कम उम्र में उनमें आने लगती है। सामाजिक जीवन पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कई बार युवा केवल इसलिए किसी कार्यक्रम या फिर गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हें डर होता है कि यदि वे नहीं गए तो कुछ उनसे छूट जाएगा। इस कारण वे अपनी रुचि और सुविधा को नज़रअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे यह आदत उन्हें मानसिक रूप से थका देती है और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। हालांकि फोमो के कुछ सकारात्मक पहलू भी है। यह युवाओं को नई चीज़ें सीखने, अवसरों की तलाश करने और सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जब यह भावना बहुत अधिक बढ़ जाए तब यह नुकसानदायक बन सकती है, इसीलिए इसके प्रति सचेत रहना भी बहुत आवश्यक है। फोमो से बचने के लिए युवाओं को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि

सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर चीज पूरी तरह से सच्चाई नहीं होती। लोग अक्सर अपने जीवन के कुछ अच्छे और खुशहाल पल ही साझा करते हैं, इसीलिए दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करना उचित नहीं। युवाओं को अपने लक्ष्यों, क्षमताओं और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसके साथ ही डिजिटल संतुलन भी बनाए रखना बेहद ही आवश्यक है। सोशल मीडिया के उपयोग के लिए समय निर्धारित करें, परिवार और मित्रों के साथ संवाद करें, खेलकूद, योग, पढ़ाई और रचनात्मक गतिविधियों को समय दें। ये सब चीजें फोमो को कम करने में मदद कर सकती है। ध्यान और आत्मचिंतन जैसी आदतें भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकती है। दोस्तों, फोमो आधुनिक डिजिटल दुनिया की एक ऐसी महत्वपूर्ण चुनौती है, अगर इसे समय रहते नहीं समझा जाए और नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह युवाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। जीवन की वास्तविक खुशी दूसरों के अनुभवों को देखकर नहीं बल्कि अपने अनुभवों को पूरी तरह से जीने में है। अगर युवा खुद पर विश्वास करना सीख जाए तब फोमो की यह भावना अपने आप कम होने लगती है और वे अधिक संतुलित, आत्मविश्वासी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल समय हो गया है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं यह गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे यह प्यारा सा गीत, और इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में हम फिर से लौटेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां

0: के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज कर रहे हैं हम आशिकी 2 की फिल्म के इस गीत के साथ।

0: गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, माफ कीजिएगा, और संगीत था जीत गांगुली का। अगला गीत सुनने से पहले सुनिए संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें,
3: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

श्रोता, अभी आपने रोजा फिल्म से ये गीत सुना। आवाजी थी चित्रा सिंह की, संगीत था एआर रहमान का, और अब आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म तेजाब से ये गीत। आवाजें हैं अमित कुमार और अनाधा पडवाल की, तो लीजिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, हम संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जय हो से ये गीत, आवाजें हैं शान और श्रेया घोषाल की, संगीत है साजिद वाजिद का और गाने की बोल लिखे हैं समीर अंजान ने।

0: श्रोता, इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है। शाम के 6:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उपरांत 6:43 पर जिले की चिट्ठी तथा 6:48 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: gov.in तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, गुरुग्राम में शुरू हुई ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और नवाचार पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री PV प्लांट का उद्घाटन किया। और प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक प्री मॉनसून गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सालिहा गाजी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट मजबूत ढांचे और भंडारण प्रणाली पर तेजी से काम कर रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर मंथन किया जा रहा है। ये बैठक कल भी जारी रहेगी। देश में 1975 में लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ के मौके पर लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान में हुए इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रुपए मासिक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त उन्हें चिकित्सा मद में 5,000 रुपए माहवार भी दिए जाएंगे।
3: लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमने, हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया। अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन और 4,000 रुपए की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं। आज से हम इसको 25,000 रुपए

0: और 5,000 रुपए चिकित्सा के, 30,000 रुपए आज से आपको मिलेंगे।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सवाई माधोपुर में अभियोजन भवन का लोकार्पण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए इस भवन में राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया। इस अवसर पर श्री बिरला ने अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में दंड संहिता को न्याय संहिता में बदलने से न्यायिक प्रक्रिया त्वरित, सहज और सुलभ हुई है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब तबके को समय पर न्याय दिलाना अभियोजन की प्राथमिकता है।
0: ये दो ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पहिए हैं कि अगर ये त्वरित न्याय दिलाने की दिशा की ओर काम करने लगे तो समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय त्वरित मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कई तकनीकी विज्ञान का प्रयोग कर अपराधी बच न सके, उसके साक्ष्यों को कोई खत्म न कर सके, इसके लिए पहली बार फॉरेंसिक लैब बनी है।
1: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने राजस्थान पीटीईटी 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। इससे राज्य के 900 से अधिक बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उपमुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर में वीएमओयू क्षेत्रीय कार्यालय से ये नतीजे जारी किए। उन्होंने अव्वल रहने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। उधर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम भी आज जारी किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में शिक्षा संकुल से ये नतीजे जारी किए। इस अप्रैल और मई महीने में हुए इस परीक्षा में लगभग 83 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने बताया कि ऑन डिमांड परीक्षा करवाने में स्टेट ओपन बोर्ड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
2: स्टेट ओपन बोर्ड में पहला स्थान हमने पूरे देश में प्राप्त किया है। अच्छा जो है मार्कशीट और प्रवेश पत्र, जिसमें कई बार डमी कैंडिडेट देखते हैं तो उसमें हमने QR कोड लगाया है। प्रवेश पत्र में जैसे ही उस कोड को आप स्कैन करेंगे उसकी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी और मार्कशीट की भी, तो ये फुल प्रूफ एक तरह से इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास किया है। तो आज हम लगभग 84,966 बच्चों का रिजल्ट आज निकालेंगे।
1: शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिए जाते हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज पाली जिले के सादड़ी में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों और गौरक्षा आंदोलन के बारे में अपने विचार साझा किए। इसके बाद श्री बागड़े राजसमंद के कुंभलगढ़ पहुंचे। उन्होंने दुर्ग परिसर स्थित महाराणा प्रताप की जन्मस्थली का अवलोकन किया। श्री बागड़े ने दुर्ग अधिकारियों को आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पेज पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री पीवी प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम कुसुम योजना के तहत 600 केवी क्षमता वाले इस मॉडल से किसान सोलर पैनल से बिजली बनाने के साथ आसानी से फसल भी उगा सकते हैं। इस मौके पर श्री नागर ने कहा कि इस नई तकनीक में सोलर पैनलों को ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, इससे फसलों तक भी पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी पहुंच रही है। इस मॉडल से किसान बिजली से अतिरिक्त आय के साथ फसल उत्पादन आसानी से जारी रख सकेंगे।
3: किसान ने जो अपनी 600 किलोवाट का प्लांट था वो बस्सी के पास में कुंदनपुरा गांव में, और वहां उस किसान ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को हाइट दे करके पर एक नवाचार किया है, उसको लगभग 11 फीट तक ऊंचा उठाया है और उसके बाद उसने उसमें खेती करना प्रारंभ किया है कि किसान अपनी उपजाऊ खेती में भी सोलर प्लांट लगा करके उसकी हाइट बढ़ा करके नीचे अपनी खेती कर ले और उसके ऊपर

0: सोलर से जो बिजली पैदा होती है उस भी आय बढ़ा ले। ये एक अच्छा इनोवेशन है और इसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए और इस किसानों को और इसकी तरफ प्रेरित करते हुए इस पर काम करने की अभी आगे जरूरत है।
1: राज्य में बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और किसान अनुकूल बनाया जाएगा। आज जयपुर में पंत कृषि भवन में राजस्थान बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था के संचालन मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कृषि और उद्यानिकी सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक पर और ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर।
2: प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से बीज प्रयोगशाला जांच और ग्रो आउट टेस्ट GOT नमूना जांच को समानांतर रूप से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बीज प्रमाणीकरण के लिए लागू क्रॉप कैलेंडर में आवश्यक बदलाव करने का फैसला भी किया गया है। इससे विभिन्न फसलों के बीज समय पर प्रमाणित होकर किसानों को मिल सकेंगे और खेती किसानी में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
1: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 5-7 दिनों में और सक्रिय होने तथा पूर्वी और मध्य भारत में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इस बीच राज्य में भी प्री मानसून गतिविधियां जोर शोर से जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ झोंकेदार हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बरसात का सिलसिला बने रहने के आसार है। पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच आज दोपहर में राजधानी जयपुर में मौसम बदला और आंधी के साथ करीब 1.25 घंटा तेज बरसात हुई। झमाझम बारिश से शहर में कई जगह पानी भर गया। उधर कोटपुतली बहरोड में भी धूल भरी आंधी के साथ रिमझिम बारिश का दौर चला। कल भरतपुर, नागौर, सीकर, चूरू और श्रीगंगानगर के कुछ हिस्सों में 1-1 इंच और उससे ज्यादा पानी बरसा। निर्जला एकादशी के अवसर पर प्रदेश भर में आज श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और दिन भर दान पुण्य का दौर चला। जगह जगह सामाजिक संगठनों और लोगों ने छबील लगाकर राहगीरों को शीतल पेय वितरित किए। निर्जला एकादशी पर जल सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं मुहर्रम का पर्व कल मनाया जाएगा। ये इस्लामिक नववर्ष के 10वें दिन आशूरा को मनाया जाता है। कर्बला की जंग में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में ये दिन अकीदत के साथ गमगीन माहौल में मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिए भी निकाले जाते हैं। राजधानी जयपुर में मुहर्रम के मौके पर करीब 300 छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा, जिन्हें देर रात कल कर्बला मैदान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत के पर्व मुहर्रम को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। पाली के गिरीश रल और राहुल बारेसा ने वेस्ट जोन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में हुए इस स्पर्धा में गिरीश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वहीं राहुल ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसके तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से बढ़ाया गया है, जिससे नकली और घटिया दवाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। इसके QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे में दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू हुई। ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और नवाचार पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान निधि बढ़ाकर ₹25,000 करने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री PV प्लांट का उद्घाटन किया और प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक प्री मॉनसून गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप

0: रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बूंदी ने कल अपना 785वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुरुआत गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर जिले की सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके बाद पर्यटन सूचना केंद्र में फोटो और चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में ड्रोन कैमरे से ली गई तारागढ़ किला, रानी जी की बावड़ी, नवल सागर, जैत सागर और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरों को लोगों ने देखा। बूंदी चित्रशैली पर आधारित चित्रों ने जिले की सांस्कृतिक पहचान को भी सामने रखा। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल बूंदी जिले के 885 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें 788 वरिष्ठ नागरिक रेल मार्ग से और 97 वरिष्ठ नागरिक हवाई मार्ग से विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। यात्राओं का कार्ड जल्द जारी किया जाएगा। योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। जिले भर में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में लग रहे इन शिविरों में पात्र लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों से जुड़ी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। भूमि संबंधी प्रकरण, पट्टे, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने विभिन्न शिविरों का पिछले दिनों निरीक्षण किया और अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। बड़ी संख्या में लोग इन शिविरों का लाभ उठा रहे हैं। पिछले दिनों जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक में विभिन्न पेयजल योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को हर घर नल कनेक्शन, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पेयजल सुविधा समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्यों को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया गया। साथ ही जल योजनाओं की नियमित निगरानी करने को कहा गया। मॉनसून के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला कलेक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर नालों की सफाई का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बारिश शुरू होने से पहले सभी नालों की सफाई पूरी कर ली जाए ताकि जल भराव की स्थिति नहीं बने। जहां आवश्यकता है वहां नालों के सुधार और मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे कचरा नालों में नहीं डालें और शहर को साफ रखने में सहयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह खेल संकुल में हुआ। इससे पहले 50 दिनों तक योग जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यालयों, महाविद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों और विभिन्न संस्थानों में नियमित योगाभ्यास कराया गया। बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों ने इनमें भाग लिया। योग प्रशिक्षकों ने लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में जिले में तेजी से काम हो रहा है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों को बेहतर फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे इंटरनेट सेवाएं अधिक सुचारू होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा। महिला अधिकारिता विभाग ने जिले की कुछ ग्राम पंचायतों में साथिन के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक महिलाएं निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। विभाग ने पात्र महिलाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इधर दिव्यांगजन के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन को आसान आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। मौसम में बदलाव के साथ किसान खेतों में खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों में जुट गए हैं। कृषि विभाग किसानों को समय पर बुआई, उन्नत कृषि पद्धतियों और फसल प्रबंधन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा रहा है ताकि नई फसल की शुरुआत बेहतर तरीके से हो सके। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत रिस अदालत में ब्रिक्स देशों रा ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग गुरुग्राम में शुरू हुई। ऊर्जा सुरक्षा, लगातार विकास और नवाचार रा बारे में विचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियारी हर महीने

0: आवन वाली सम्मान निधि बधार 25,000 रुपया करण रो ऐलान कीनो। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जयपुर रा कुंदनपुरा माए देश रा पहला आधुनिक एग्री पीवी प्लांट रो उद्घाटन कीनो। और प्रदेश माए आवता 4-5 दिन ताई चौमासाओं पहली री हलचल चालते रहवन रो अनुमान। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल कहो है कि ऊर्जा माली सामाजिक बरकत और इंसान रा विकास सारू घनी खास है। वे आज गुरुग्राम माए ब्रिक्स देशां रा ऊर्जा मंत्रियों री 11वीं मीटिंग माए बोल रहा हा। ऊर्जा मंत्री कहो कि लगातार विकास सारू किफायती भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा जरूरी है। वह कहो कि भारत आवता भगत माए ऊर्जा हल्का सारू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्मार्ट मजबूत ढांचा और भंडारण प्रणाली माथे तेजियों काम कर रियो है। मनोहर लाल कहो कि देश माए हालताई बिजली रा 6 करोड़ों बत्ता स्मार्ट मीटर लगातिया चिया है। ब्रिक्स देशारा नुमाइंदा री आ मीटिंग काली फैला। साल 1975 माए देश माए लगाई चिया आपातकाल री वर्षगांठ रे मौके आज लोकतंत्र सेनानियों ने नमन करी चियो। ई मौके राजधानी जयपुर माए लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह राखी चियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ई कार्यक्रम माए शामिल थिया। ई मौके मुख्यमंत्री लोकतंत्र सेनानियों री मान निधि री रकम बधार 25,000 रुपया महीना करण रो ऐलान कीनो। वह कहो कि ईसा गई लोकतंत्र सेनानियों ने इलाज सारोई हर महीना 5,000 रुपया दिया जावेला।
1: लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमने हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया। अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं। आज से हम इसको 25,000 रुपये और 5,000 रुपये चिकित्सा के 30,000 रुपये आज से आपको मिलेंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर माए अभियोजन भवन जनता ने सौंपियो। कलेक्ट्रेट परिसर माए बनाई जाई भवन माए राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन रो शपथ लेवन रो जलसोई राखी चियो।

0: लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमने, हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया। अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन और 4,000 रुपए की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं। आज से हम इसको 25,000 रुपए और 5,000 रुपए चिकित्सा के 30,000 रुपए आज से आपको मिलेंगे।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर में अभियोजन भवन जनता ने सौंपियो। कलेक्ट्रेट परिसर में बनाई जाई भवन में राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन रो शपथ लेवन रो जलसोई राखी छो। ई मौके श्री बिरला अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली री शुरुआती कीनी। वे कहो कि देश में दंड संहिता ने न्याय संहिता में बदलनो न्याय देवण रो काम तेज और आसान भयो है। लोकसभा अध्यक्ष कहो कि समाज रा गरीब तबकारी जनता ने टेम सर न्याय दिरावण माथे अभियोजन रो खास ध्यान है।
2: ये दो ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पहिए हैं कि अगर ये त्वरित न्याय दिलाने की दिशा की ओर काम करने लगे तो समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय त्वरित मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कई तकनीकी विज्ञान का प्रयोग कर अपराधी बच न सके उसके साक्ष्यों को कोई खत्म न कर सके, इसके लिए पहली बार फॉरेंसिक लैब बनी है।
1: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान पीटीईटी परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। इनु राज्य रा 900 बीएड कॉलेज में दाखिला दिया जावेला। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा जयपुर में वीएमओयू रा क्षेत्रीय कार्यालय नतीजा जारी कीना। ई मौके वे अव्वल रहा विद्यार्थियों ने फोन कर बधाई दीनी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ही 10वीं और 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर रा शिक्षा संकुल नतीजा जारी कीना। अप्रैल मई 2026 में भी ई परीक्षा में करीब 83,00,000 विद्यार्थी बैठा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल री सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा बतायो कि ओपन स्कूल नियमित स्कूल शिक्षा हासिल नहीं कर सकया विद्यार्थियों ने पढ़ाई करावन रा मकसद नो काम करे है। वह कहो कि ओपन स्कूल छोड़ देवन वाला बच्चा ने तादाद कम करण माई मददगार साबित हो रहा है। अरुणा शर्मा कहो कि ऑन डिमांड परीक्षा करावन रा हल्का माई स्टेट ओपन बोर्ड देश माए अव्वल रहो है।
3: स्टेट ओपन बोर्ड में पहला स्थान हमने पूरे देश में प्राप्त किया है। अच्छा जो है मार्कशीट और प्रवेश पत्र जिसमें कई बार डमी के कैंडिडेट भेजते हैं तो उसमें हमने QR कोड लगाया है। प्रवेश पत्र पे जैसे ही उस कोड को आप स्कैन करेंगे उसकी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी और मार्कशीट की भी, तो ये फुल प्रूफ एक तरह से इंप्रूव करने का पूरा प्रयास किया है। तो आज हम लगभग 84,966 बच्चों का रिजल्ट आज निकालेंगे।
1: शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सारू ऑनलाइन तरीका अर्जियां मांगी है। अर्जियां राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल मथे 10 जुलाई ताई दाखिल करी जा सके है। स्कूल शिक्षा रा हलका माए बेहतरीन काम, नुआ काम और समर्पण रो दर्शाव करण वाला अध्यापका ने हर साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देर नवाजा जावे है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े पाली जिला रा सादड़ी माए राखी जिया एक धार्मिक कार्यक्रम माए संता और गौ रक्षा आंदोलन रा बारा माए विचार बताया। इन पाछे वे राजसमंद जिला रा कुंभलगढ़ किला माए महाराणा प्रताप रा जन्म रिठौड़ी देखी। श्री बागड़े अहलकारा ने किला माए आवन वाला सैलानिया सारू सुबिता बधावन रा हुक्म दीना। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। जयपुर कना कुंदनपुरा गांव में देश रो पहलो आधुनिक एग्री पीवी प्लांट लगाईचियो है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इनरो उद्घाटन कीनो। पीएम कुसुम योजना रा तहत 600 किलोवोल्ट बूता वाला ई मॉडल नु किसान सूरज री रोशनी बिजली बनावन सागे आसानी साखा ले सकेला। ई मौके श्री नागर कहो कि ई नई तकनीक माए सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना ऊंची लगाई जावे है, जिनो किसान बिजली पैदा करण अतिरिक्त आमदनी सागे साखा ले सकेला।
4: किसान ने जो अपनी 600 किलोवाट का प्लांट था वो बस्सी के पास में कुंदनपुरा गांव में, और वहां उस किसान ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को हाइट दे करके और एक नवाचार किया है, उसको लगभग 11 फीट तक ऊंचा उठाया है और उसके बाद उसने उसमें खेती करना प्रारंभ किया है कि किसान

0: अपनी उपजाऊ खेती में भी सोलर प्लांट लगा करके उसकी हाइट बढ़ा करके नीचे अपनी खेती कर ले और उसके ऊपर सोलर से जो बिजली पैदा होती है उसकी आय बढ़ा ले। ये एक अच्छा इनोवेशन है और इसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए और इस किसानों को और इसकी तरफ प्रेरित करते हुए इस पर काम करने की अभी आगे जरूरत है।
1: राज्य में बीजा ने प्रमाणित करण रो काम और साफ कोई सागे और किसान अनुकूल बनायो चावेला। राजस्थान बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था रा संचालन मंडल री आज जयपुर माई भी मीटिंग माई ओ फैसलो करी चियो। कृषि और उद्यानिकी सचिव मंजू राजपाल री सदारत माई भी मीटिंग माई बीज प्रयोगशाला जांच और ग्रो आउट टेस्ट GOT नमूना जांच ने एक सागे चलावन रो फैसलो करी चियो। इस आगे बीज प्रमाणीकरण सारू लागू क्रॉप कैलेंडर माई जरूरी बदलाव रो फैसलो ये करी चियो। अरब मौसम चौमासारी बिरखा स्वरूप हेवनो पहले राज्य में आवता 4-5 दिन ताई कठे कठे गरज चमक सागे जोरदार बायरो बाजन और बरसात फेवन रा आसार है। आवता महीना रा पहला सप्ताह माए प्रदेश रा कई हल्का माए बिरखा बधवा रा आसार है। ये बीचे आज दोपहर पाछे राजधानी जयपुर माए आंधी चालन सागे करीब 5 घंटा ताई झमाझम में बरसियो जिनो कई ठोणा पानी फरकियो। कोटपुतली बहरोड़ माए आंधी चालन सागे छाटो छिड़को भियो। काल भरतपुर नागौर सीकर चूरू और श्रीगंगानगर रा कुछ हल्का माए 1-1 इंच और मोमबत्ती बिरखा भी। निर्जला ग्यारस रे मौके आज आखा राज्य में जात्रु दान पुण्य कीना। नैरी नैरी ठोड़ा सामाजिक संगठन और दूजा लोगों ने ओरों छबील लगार राहगीरान ठंडो पाइचियो। निर्जला ग्यारस ने जल सेवारो खास महत्व मान्यो चावे है। दूजी गानी मुहर्रम काल मनायो चावेला ओ इस्लाम नुआ साल रा 10वां दिन आशूरा ने मनायो चावे है। करबलारी जंग माए हजरत इमाम हुसैन और मारा साथियां री शहादत री याद माए ओ दिन अकीदत सागे गमगीन माहौल माए मनायो चावे है। इ मौके ताजे आई निकालिया चावे है। राजधानी जयपुर माए मुहर्रम रे मौके छोटा मोटा करीब 300 ताजियां रो जुलूस निकालियो चावेला। ताजिया मोड़ी रात करबला मैदान माए सुपुर्द खाक करिया चावेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े मुहर्रम शांति सागे मनावन री अरज कीनी है। वेस्ट जोन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग होड़ माए पाली रा गिरीश रल सोनारो और राहुल बारेसा कांसारो तमगो जीत्यो है। आ होड़ छत्तीसगढ़ रा बालोद माए भी ही। देश माए पोलियो री बीमारी न जड़ों खत्म करन रा मकसद चलाया जा रहा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रा तहत 28 जून दीतवार ने 5 साल ताई रा बच्चा ने पोलियो बचाव री दवा री खुराक पाई चावेला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रे मुजब राज्य रा सगला सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र और खास तौर हु बनाई चिया पोलियो बूथा माथे आ खुराक पाई चावेला। दीतवार ने दवाई नी पीवन वाला बच्चा ने 29 और 30 जून ने स्वास्थ्य कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जार आ खुराक पावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। ई सारू आप ई मुफ्त नंबर 1800117800 काल ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ई विचार भेजा जा सके है। नंबर ओ जो सुन ले रहा हो सा 1800117800। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा हो। भारत री सदारत माए ब्रिक्स देशां रा ऊर्जा मंत्रियां री मीटिंग गुरुग्राम माए सरूफी। ऊर्जा सुरक्षा लगातार विकास हर नवाचार रा बारा माए विचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियारी हर महीना दी जावन वाली सम्मान निधि बधार 25,000 रुपया करण रो ऐलान कीनो। ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर जयपुर रा कुंदनपुरा माए देश रा पहला आधुनिक एग्री PV प्लांट रो उद्घाटन कीनो। और प्रदेश माए आवता 4-5 दिन ताई चौमासाओं पहली री हलचल चालती रहवण रो अनुमान। इसागई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो।

0: एफएम में 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। संध्या के 7 बज रहे हैं, नीचे जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम बांग्लादेश ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण कुछ ही देर में।
1: कप्तान निगार सुल्ताना ने कितना सही फैसला लिया है ये जब मैच का परिणाम आएगा तब देखना होगा, लेकिन भारत के लिहाज से ये टूर्नामेंट अभी तक मिला जुला रहा है। पाकिस्तान को 64 रन से हराया था पहले मुकाबले में 14 जून को, 17 जून को नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया, लेकिन 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से 6 विकेट से हार मिली और वहीं से थोड़ा सा समीकरण भारत के लिए पलटा। हालांकि नेट रन रेट के लिहाज से दिवाइन अभी भी भारत दक्षिण अफ्रीका से आगे है और पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है।
2: Yes, it's a positive for India and it'll all probably boil down to that Sunday's match against Australia. But for the moment, they have to take on the two openers from Bangladesh who have made their way out to the middle, Dilara Akhtar and Juwairia Firdaus. And it does look like Shefali Verma is going to deliver the first over. So that sixth bowling option coming into play straight away.
1: बड़े दिलचस्प है ये क्योंकि शेफाली आमतौर पर नियमित गेंदबाज नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में भरपूर उपयोग हुआ है उनका और पहला ओवर लेकर आ रही है। दिलचस्प होगा ये देखना कि किस तरह से उनका ये पहला ओवर चलता है। और इस समय स्ट्राइक पर बांग्लादेश की सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं, फील्ड पूरी तरह से तैयार है और दिलारा अख्तर इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रही है। धूप पूरी तरह से खिली हुई है और बस कुछ ही सेकेंड्स में ये मुकाबला शुरू होने वाला है। भारत को अपना अंतिम मैच 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। तो भारत अगर दोनों मुकाबले जीत लेता है, नेट रन रेट बेहतर रहता है, जो अभी दूसरे स्थान पर है उसको बनाए रखता है, तो सेमीफाइनल में पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पहली गेंद इस ओवर की और इसको सुरक्षित खेलना चाहती थी, बीट हुई पूरी तरह से, ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर निकली ये गेंद और चारों खाने चित हो गई। ये पहली गेंद कैरम बॉल थी और इस पर पूरी तरह से चकमा खा गई।
2: या ऑलमोस्ट प्लेइंग फॉर द टर्न व्हिच वाजंट देयर, सो वेल बॉल्ड बाय शेफाली।
1: जी हाँ, और शुरुआत भारत के लिए अच्छी हुई है। स्पिनर्स की मददगार पिच पर भारत क्या कमाल करेगा ये देखना होगा। और इस गेंद को खेलना चाहती थी, ड्राइव करना चाहती थी कवर की तरफ, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लिया इस गेंद ने। किस्मत वाली रही कि विकेट कीपर की तरफ नहीं गई ये गेंद, एक रन लिया और फिर दूसरे के लिए भी पलटी है और ये दो रन पूरे हुए हैं। इन दो रनों के साथ बांग्लादेश की स्कोरिंग की शुरुआत हुई है और भारतीय टीम चाहेगी कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश की पारी को समेटा जाए। इस पिच पर 130 के आसपास का रन भी काफी सुरक्षित माना जा रहा है। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर दिशा में परिवर्तन किया था, जिसको हल्के हाथों से खेला ऑन साइड में, इस बार एक रन मिलेगा और इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 3 बगैर किसी नुकसान के। जैसा बताया दिबायन ने कि आज भारतीय टीम में दो परिवर्तन हुए हैं, राधा यादव और रेणुका सिंह की टीम में एंट्री हुई है, जबकि अरुंधति रेड्डी और प्रेमा रावत को विश्राम दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए मुकाबला। रेस में बांग्लादेश की टीम भी बनी हुई है। ग्रुप ए से जो दो टीम बाहर हुई है वो है नीदरलैंड्स की टीम और उनके साथ साथ पाकिस्तान की टीम। अगली गेंद इस बार फिर से लेग स्टंप पर, दिशा से थोड़ी सी भटकी हुई गेंद, हालांकि बल्लेबाज ये देख रही थी कि अंपायर क्या इस गेंद को वाइड बॉल करार देते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल फेयर डिलीवरी और इस पर कोई रन नहीं। ये ओवर चलता हुआ 4 गेंदें हो चुकी है, 5वीं गेंद के साथ तैयार। इस बार शेफाली वर्मा की ये गेंद फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल पाई। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी रफ्तार की गेंद और पिच का पूरा फायदा उठाते हुए। इस पिच पर अनुमान यही है कि गेंद थोड़ी सी रुक कर आएगी, अनइवन बाउंस भी देखने को मिल सकता है और अभी तक इस ओवर में परेशानी हुई है बांग्लादेश के दोनों सलामी बल्लेबाजों को। दिलारा नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं 3 रन बनाकर और इस समय फिरदौस ने इस गेंद को खेला कवर की तरफ, कोई रन नहीं और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में बांग्लादेश ने बनाए 3 रन बगैर किसी नुकसान के।
2: 3 without loss, tidy start and Shefali Verma just getting a couple of balls to spin, which will be encouraging news not just for the Indian spinners but also for the Bangladesh spinners themselves. A little bit about the two openers for Bangladesh, Dilara Akhtar, 22 years of age, Juwairia Firdaus, 20 years of age, both right.

0: next wicket. And Dilara, in going for the big hike this time, plays it a bit too nicely and it carries all the way to deep square leg. First blood for India, and it's Renuka in her return match to the World Cup, striking in a very first over. That'll do her confidence a world of good.
1: बिल्कुल, ये पहला मैच विश्व कप का रेणुका के लिए, और ये गेंद थोड़ी चोटी डाली थी, जानबूझकर फिल्डर उस जगह पर लगाया था, गेंद को पुल किया, सीधे हाथों में ये आसान सा कैच, पहला विकेट गंवाया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की टीम की कोशिश यही थी कि जो रन रेट इस समय है वो थोड़ा सा परेशानी का कारण, दो ओवर हो गए सिर्फ 8 रन स्कोर बोर्ड पर, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास, उसमें गति देने का प्रयास, और उस गति को दे नहीं सकी इस मौके पर बल्लेबाज। और अख्तर आउट होने वाली बल्लेबाज वापस पवेलियन में गई है। रेणुका सिंह ठाकुर ने अपने पहले ओवर में भारत को पहली कामयाबी दिला दी है। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, देवायन जैसा कह रहे थे कि दोनों टीमों ने अभी तक जो मुकाबले खेले हैं दोनों को दो दो जीत मिली है, और पॉइंट टेबल में अंकों के लिहाज से दोनों टीमें बराबरी पर हैं। नेट रन रेट में भारत जरूर बांग्लादेश से ऊपर है, फिलहाल बांग्लादेश की टीम चौथे स्थान पर है नेट रन रेट के लिहाज से, भारत दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की टीम है, नेट रन रेट में वो भारत से पीछे है, अंक इन तीनों टीमों के बराबर हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप ए में 4 में 4 जीत के साथ टॉप पर है। और अब नए ओवर की शुरुआत हुई है, पहली गेंद, और इस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेला पॉइंट की तरफ, बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया। श्री चढ़नी आई हैं परिवर्तन के तौर पर शेफाली वर्मा की जगह। शेफाली ने भी पहला ओवर अच्छा डाला था, रन उन्होंने ज्यादा दिए नहीं थे, 3 रन दिए थे, लेकिन श्री चढ़नी सबसे भरोसेमंद गेंदबाज इस समय भारत के लिए। इस बार गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहती थी, बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद ने थर्ड मैन की तरफ जा रही है, फील्डर भाग रही है, 1 रन लिया, दूसरे के लिए पलटी है, और 2 रन आए जरूर हैं लेकिन आत्मविश्वास भरे ये रन निश्चित रूप से नहीं है।
0: Absolutely, a little bit of a across the line hike from Firdaus, but just shows the tentativeness or the excitement, the anxiety that the Bangladesh batters are feeling because of this tight start by the Indian bowlers.
1: और अपने इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए शिचरणी, उनकी ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर खेल दिया सुरक्षित तरीके से। गेंद की उछाल बल्लेबाजों को परेशान कर रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। थोड़ा बहुत टर्न भी देखने को मिला है, हालांकि बहुत ज्यादा टर्न अभी नहीं दिखा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे पारी आगे बढ़ेगी स्पिनर्स के लिए और भी मददगार होती जाएगी ये पिच। मैनचेस्टर की अगली गेंद को इस बार फिर से सुरक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं, दबाव लगातार बनता हुआ बांग्लादेश के लिए, और उसी दबाव में पहला विकेट भी बांग्लादेश ने गंवाया क्योंकि रन नहीं आ रहे थे। अभी तक कोई चौका बांग्लादेश की तरफ से लगा नहीं है, तीसरा ओवर चल रहा है।
0: Absolutely no boundaries and no boundary balls. Even the fielding has been quite tidy thus far from India.
1: और क्षेत्ररक्षण की बात भारत की हो भी रही थी, पिछले मुकाबले में 2 कैच छूटे थे और वहां से भारत मैच गंवाया था। हवा में इस बार गेंद, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, लेकिन ये मौका भारत के हाथ से जाता हुआ, 1 कैच छूटता हुआ, और फील्डर
0: यस्तिका
1: भाटिया, उन्होंने गेंद का पीछा किया था, विकेटकीपर खुद इस गेंद तक जाना चाहती थी लेकिन गेंद तक पहुंची नहीं, इस बार पुल करने का प्रयास था, पीछे फील्डर भागी तेज रफ्तार के साथ, विकेटकीपर और एक फील्डर के बीच थोड़ी सी बातचीत, लेकिन कैच वो पकड़ा नहीं जा सका। 12 इस समय बांग्लादेश के स्कोर 2-1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, श्री चढ़नी की थोड़ी सी टर्न लेती हुई गेंद, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
0: Yeah, tidy start by the world number 1 ranked women's T20I bowler, recently crowned N. Sri Charani, also the most wickets thus far in this T20 World Cup. 10 wickets, should have been 11 really, but Yastika Bhatia making a meal of that chance. Herself a fielder, or rather herself a keeper normally, maybe that's what played a role in her opting to go for that catch. She was fielding at square leg and hence was closer to the ball, but in the end didn't really judge it to perfection at all in chasing it down. And Richa Ghosh went with her gloves. Maybe she would have been the better option to go on for that catch. But anyway, that chance has been missed. Juwaria Firdaus getting that lifeline at 3. Now, Shobana Mustari has walked in at number 3. She's an experienced player, 24 years of age. 65th match for her as she faces up to Renuka. The very first ball glided away on the onside. That single incidentally takes her along to 996 career T20I runs. If she gets 4 more, then she'll become the third Bangladeshi batter after her captain Nigar Sultana Jyoti and Farhana Hawk, who will also go across the 1000 mark. Renuka coming in for a second.

0: over. The first over was slightly wavered at times, three wides in that, five runs in all, but also picked up a wicket. So that will definitely do her confidence a lot of good. 13 for 1 Bangladesh, as again she strays way down the leg side. Firdaus looking to whip it away but misses out entirely. It leads to yet another extra run, 14 for 1, as Renuka now concedes 7 from 1.1 overs. And Shobana Mustari, as I was mentioning, just about 4 runs away. She's had a bit of a lean run in this tournament, 4-4 and 22 not out in the previous match, but has that experience behind her, as a highest score of 59 in T20Is. And she's come in ahead of the likes of Sharmeen Akhtar, as well as the skipper Nigar Sultana, who's widely considered one of their best batters. This is driven down the ground, and this could go for the very first boundary. It is 4 runs.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Renuka having strayed in her line a few times, this time just pitching it up a little bit, and that's what allows Firdaus to just punch it way down the ground and pick up the first boundary. Dharmendra.
2: जी हाँ, बहुत बढ़िया चौका, सीधे बल्ले से खेला गया सामने की तरफ और फील्डर ने प्रयास भी किया लेकिन पहुंच नहीं सकी कोई भी फील्डर. बढ़िया चौका आता हुआ बांग्लादेश के लिए.
0: 18 for 1 as Firdaus reaches 9 from 11 balls. Not always looked at her most comfortable. Also given a lifeline, of course, in the last over. But she has the potential to bother this Indian bowling lineup. Next ball, just back of a length, punched it straight towards covers, where it's fielded by Smriti Mandana, who's got herself in that position. So in this over, thus far, 1 wide, 4, and then a dot ball. Renuka Singh coming back into the Indian 11 after a little bit of a hiatus. Hasn't played too many matches. If I recall correctly, last probably played against South Africa in April of this year when India had toured there. And because of that, she has been left out of the 11. But they've just gone back to her experience. The next ball again swinging in, just seaming in off the pitch, and then driven very nicely straight down the ground, but fielded by Shefali Verma. In fact, a bit too well, because it went so fast to Shefali Verma at mid-on that there was no possibility of a run at all. So yet another dot ball, 3.4 overs completed, 18 for 1. Bangladesh winning the toss, electing to bat in this significant encounter for both teams on a significant date, may I remind all the viewers, 25th June, synonymous with Indian cricket on two counts. We'll come back to that after the next ball. Again, driven in the same direction, goes straight towards Shefali Verma. 1932, 25th June, of course, India's first ever test match, which was played in England. And then 1983, 25th June. That's a date that we cannot forget, Dharmendra.
2: Ji haan, aur aaj ka din bhi bada hai Bharat ke liye, toh Bharat ke haath jeet aaye.
0: Absolutely. The last shot, in fact, just taking a little bit of a deflection of the non-striker Shobana, and that's what made it go a little quicker and faster straight towards Shefali. May well have found the gap otherwise. 3 dot balls. Renuka will be looking to finish this over tightly. The next one is thwarted away but played on the onside, dropped by Radha Yadav. It goes for 4.
1: Ye laga aabha ka choka.
0: India are being very, very generous with Firdaus. Dropped on 3 and now on 9 as Radha Yadav shells a pretty simple one at deep mid-wicket, and it leads to a boundary. And that finishes the over at 21, 22 for 1.
2: जी हाँ, ये एक मौका राधा यादव के हाथ से और फिसलता हुआ. पिछले मुकाबले को अगर याद करते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वहां पर भी राधा यादव से 2 कैच छूटे थे और 2 महत्वपूर्ण कैच छूटे थे. उसकी वजह से उस मुकाबले में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था. ये कैच छोड़ना भारत के लिए कितना भारी पड़ेगा ये जरूर देखना होगा. राधा यादव थोड़े से मानसिक दबाव में निश्चित रूप से दिखाई दे रही हैं. पिछले मुकाबले में वो अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में मैदान पर थी. इस मैच में वो 11 में शामिल हैं, उनको गेंदबाजी भी करनी है, लेकिन ये कैच भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ा सकता है. 2 कैच अभी तक भारत के छूट चुके हैं इस मुकाबले में. नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और अर्शी चरणी की पहली गेंद को सुरक्षित तरीके से शॉर्ट कवर की तरफ खेला, कोई रन नहीं. बहुत हड़बड़ाहट में बांग्लादेश की टीम है नहीं, लेकिन मौके निश्चित रूप से 2 दिए हैं, और अगर आप मौकों को लपकेंगे नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है, मुश्किलें आपके लिए और ज्यादा हो सकती हैं. अगली गेंद को इस बार बाहर निकलकर ड्राइव करने का प्रयास, कवर में गई थी गेंद, हवा में थी थोड़ी देर के लिए. क्या यह मौका भी छूटा है? जी हाँ, एक और कैच छूटता हुआ फील्डर वहां पर फिर से, अगर हम कहें तो 1 रन जरूर लिया है. यदि इस बार इस कैच को हवा में खेला था, सीधा एक आसान सा कैच था, मुश्किल ज्यादा नहीं थी, और एक और कैच जमीन पर टपकता हुआ.
0: आई थिंक दिस वन मे हैव बीन नंदिनी शर्मा एट कवर्स.
2: अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, फिर से हवा में गेंद, फिर से कैच छूटा, एक और कैच छूटता हुआ भारत के लिए 4th. ये मौका जब भारत ने कैच छोड़ा है, भारत के

0: खिलाड़ियों ने कैच छोड़ा है, नंदिनी से यह कैच छूटा है।
1: Second successive ball and second successive catch which has gone to Nandini and the ball is following around because she's been moved now to short third and that's exactly where the ball went off the outside edge and she made a good effort this time actually getting across to it and having got there she'll be disappointed that it came out.
0: जी हाँ, भारतीय ड्रेसिंग रूम के चेहरे भी मायूस क्योंकि इस तरह के मौके नहीं छोड़े जा सकते। अगली गेंद को इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला चैलेंज के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया फिरदौस ने और सीधे बल्ले से अपने सामने की तरफ खेला, सुरक्षित स्ट्रोक, कोई फील्डर वहां पर थी नहीं और यह चौका एक और आता हुआ बांग्लादेश के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 27 एक विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर चल रहा है, दो गेंदे अभी भी बची हुई हैं और इस ओवर में दो मौके भारतीय फील्डर नंदिनी के हाथ से फिसले हैं। अगली गेंद इस बार स्वीप करने का प्रयास कामयाब हुई है, फील्डर हालांकि डीप में है, एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं, इस एक रन से स्कोर में और इजाफा होता हुआ बांग्लादेश के लिए और स्कोर बढ़ता हुआ 28 एक विकेट के नुकसान पर। अगर चारों कैच पकड़ लिए गए होते अभी तक तो क्या स्थिति होती बांग्लादेश की।
1: Yeah, and especially the three in succession which have come off the last couple of overs, including two of them off Sri Charani's over.
0: अगली गेंद इस बार हवा में फिर से खेला, हालांकि फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए। गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चैलेंज के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: तो इस तरह से चौके के साथ पांचवें ओवर की समाप्ति और इस समय बांग्लादेश का स्कोर 32 रन एक विकेट के नुकसान पर।
1: Yes, for the first time, I think, in this innings, Bangladesh and their run rate going over 6 runs per over. So that's a little bit of a danger sign from the Indian perspective because they've still got some batting up firepower to come. The likes of Sharmeen Akhtar, they've got the skipper, Nigar Sultana, they've got Ritu Moni, Shorna Akhtar who can whack the ball around as well. Then some of the all-rounders, Rabia Khan who can also wield the long handle. So India need to start taking those catches to begin with. Lots of chances shelled. Juwaria Firdaus will believe that she can go and buy a lottery ticket tonight because she's been dropped 3 times by India. Dropped on 3 by Yastika Bhatia, dropped on 9 by Radha Yadav and dropped on 13 by Nandini Sharma. Nandini Sharma also letting Shobhana Mustari get away when she was on 1 herself. So this partnership also beginning to look a little bit threatening. 24 runs realized between the two of them. And more importantly, over the last couple of overs, we are seeing the boundaries beginning to come. Some chances taken, especially by Firdaus, the way that she's going across the line, trying to exploit the gaps on the onside. We are still inside the power play. One more over of the power play to come. Only two fielders allowed outside the inner ring. And the Bangladeshi batters are looking to maximize those scoring opportunities as much as possible. India desperate for wickets. Who do they turn to? They have Deepti Sharma. But for the moment, they've gone back to Shefali Verma. And Shefali Verma, the very first ball is played away on the offside of the outside edge and it will fetch a couple of runs for

0: good job. Has come up with an indifferent performance in this tournament. Every now and then she plucks out some great catches, some terrific stumpings, but also tends to miss a few chances. And today, India don't want that to happen because they're already getting a lot of those from the outfielders. Straight on the stumps, this time played away on the offside, looking for a quick single, but very quick to pounce on the ball was Jemima Rodrigues, coming in from point and getting a little bit of support along with one of her teammates as well. Shefali Verma operating with two fielders on the onside. Deep mid-wicket is Radha Yadav and Smriti Mandhana is fielding at long on. The next ball worked away on the onside. Deep mid-wicket should come into play. It's been played quite nicely, so it will only result in one. Firdaus was pushing hard, but Mustari was very quick to turn her down and tell her that let's keep it down to one. One ball left in the power play. It's been a tidy performance from Bangladesh, although India have missed so many chances, and that's proved to be their undoing in a sense. However, considering all of that, 39 for 1 is a good score. 7 runs already of this over. How do they try to finish off this final over in the power play? Shefali Verma just looking to make a few adjustments in the field, possibly. A strong offside ring, there's a mid-off, there's a cover, there's a point as well as a backward point. This time pulled away on the onside, but there is a fielder in the deep. It goes straight towards Radha Yadav. Only a single conceded. 6 overs done. 40 for 1. The power play is over with Shefali's over producing 8 runs.
1: तो पावर प्ले बांग्लादेश के लिए कुल मिलाकर अच्छा रहा है. एक विकेट सिर्फ गवाए हैं. 40 रन इन 6 ओवरों में बनाए हैं बांग्लादेश ने. हालांकि मौके अगर भारत ने भुनाए होते तो निश्चित रूप से स्थिति बांग्लादेश के लिए मुश्किलों भरी हो सकती थी. लेकिन फिरदौस ने जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया. उन्होंने अभी तक 23 गेंदों में 25 रन बनाए हैं, 4 चौके लगाए हैं. बांग्लादेश की तरफ से अभी तक कोई छक्का आया नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी शुरुआत कही जा सकती है बांग्लादेश के लिए. शेफाली वर्मा का ये दूसरा ओवर था. कुल मिलाकर अभी तक उन्होंने 2 ओवर किए हैं, 11 रन खर्च किए हैं, 5.50 की औसत से रन दिए हैं, किफायती रही हैं. श्री चरणी ने 2 ओवरों में 14 रन दिए. क्या उस छोर से गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होगा जहां से श्री चरणी अभी तक गेंदबाजी कर रही थी? उनका पिछला ओवर काफ़ी अच्छा रहा था, जिसमें 2 मौके भारत के पास आए थे, हालांकि दोनों फिसल गए थे नंदिनी के हाथों से. नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है. ये मुकाबला काफ़ी अहम है दोनों ही टीमों के लिए. अगर बांग्लादेश की टीम इस मैच को जीतती है तो सेमीफाइनल में रेस उसका भी बना रहेगा, और अगर भारत की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब होती है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे और सेमीफाइनल की रेस में मजबूती से बनी रहेगी भारतीय टीम. दक्षिण अफ्रीका का भी आज मुकाबला होना है भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से नीदरलैंड के साथ, और उस मैच में ऐसा माना जा रहा है कि फेवरेट है दक्षिण अफ्रीका की टीम. आसानी से वो मैच जीत सकती है और अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है. दिबायन
0: एब्सोल्युटली. एंड फॉर इंडिया वन बिलीव्स दैट परहैप्स द क्रंच गेम विल बी द संडे एट लॉर्ड्स व्हेन दे फेस द ऑस्ट्रेलियंस. एंड वन थिंग्स फॉर श्योर, व्हाइल ऑस्ट्रेलिया आर अ माइटी टीम, history has shown that one team which has upset them a few times has been the Indians. So India need to perhaps just play a slightly braver brand of cricket. Thus far they've seemed a little confused about the ideal 11, even today 2 changes. So if that continues, then that gives a little bit of an advantage to Australia. But I personally believe if they can rope in one more bowling option, that can do them a world of good. At the moment they're playing an extra batter. In the initial matches it was Bharti Fulmali, since then they've gone back to Yastika Bhatia. But if they drop one of those or both of those and play a bowler instead or a bowling all-rounder, then that just enables them to play Jemima Rodrigues at 3, Harmanpreet at 4, and then maybe go from there. Maybe have a Deepthi Sharma or a Richa Ghosh at 5 and 6 respectively. And then the bowlers, all-rounders and the rest of them can get the runs.
1: Shayad ballebazon ki taraf se aatmavishwas abhi tak team management ko mila nahi hai. Agar hum मिडिल ऑर्डर की बात करें या उससे नीचे की बात करें तो उतना सफल अभी तक भारत का सफर रहा नहीं है. टॉप ऑर्डर ने अगर बल्लेबाजी की है तो भारत ने अच्छे स्कोर खड़े किए हैं, भारत को जीत मिली है. तो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं इस मैच से भारत को वापस लाना होगा अगर सेमीफाइनल और आगे का रास्ता तय करना है तो. बहुत ज़रूरी है भारत के लिए मुकाबला हर लिहाज से. और अब नए ओवर की शुरुआत हो रही है. नंदिनी शर्मा गेंदबाजी के लिए आ रही हैं. 6 मैचों का अनुभव, 6 विकेट ही उनके नाम पर हैं और श्री चरणी की जगह उनको मोर्चे पर लगाया गया है. 6 ओवरों में बांग्लादेश ने बनाए हैं 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर. फिरदौस 25 रन बनाकर खेल रही हैं, 23 गेंदों का सामना किया है. स्ट्राइक पर मुस्तारी, जिन्होंने 5 गेंदों में 7 रन

0: बनाए। पहली गेंद को सामने की तरफ खेला सीधे बल्ले से और मिड ऑफ से जब तक फील्डर पहुंचे वहां पर शेफाली वर्मा, तब तक एक रन लेने का मौका था। इस एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला, स्कोर हो गया 41 एक विकेट के नुकसान पर। 102.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये गेंद थी, बहुत ज्यादा रफ्तार थी नहीं लेकिन अपनी स्विंग से थोड़ा सा परेशान कर सकती है। हवा भी चल रही है इस समय मैनचेस्टर में। अगली गेंद को इस बार ड्राइव किया, कवर की तरफ मिसफील्डिंग हुई है, एक रन जहां पर नहीं होना चाहिए था वहां पर एक रन हुआ है और इस एक रन से स्कोर बढ़कर हो गया 42 एक विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग का स्तर भारत का इस पूरे टूर्नामेंट में उतना अच्छा रहा नहीं है।
1: Yes, and today they began well, but one just feels that it's probably been a cascading effect. Since that dropped catch, there have been a few errors creeping into the fielding.
0: तीसरी गेंद इस ओवर की नंदिनी शर्मा की, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को स्टीयर किया, थर्ड मैन की तरफ, फील्डर भाग रही, कोई फायदा नहीं होगा, चार रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: बल्लेबाज मुस्तारी ने देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर जगह है, थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ हटी, अपने आप को सफल किया और उसके बाद बल्ले का मुंह भर खोल दिया। फील्डर हालांकि थर्ड मैन पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर थी लेकिन उनसे काफी दूर जानबूझकर खेला गया स्ट्रोक और यह बढ़िया चौका आता हुआ इस समय बांग्लादेश के लिए। इस चौके के साथ मुस्तारी पहुंच गई 12 रन पर और बांग्लादेश का स्कोर हो गया 46 रन एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज और कप्तान के बीच में थोड़ी सी बातचीत, क्या यहां पर निर्देश मिला है कप्तान की तरफ से, वो देखना होगा अगली गेंद पर। और इस बार ये गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास, बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग अच्छी हुई इस मौके पर, हालांकि हाथ में गेंद आने के बाद फिसली जरूर लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं था। अच्छा ओवर चलता हुआ बांग्लादेश के लिए, इस ओवर में अभी तक कुल मिलाकर 6 रन आए हैं। रन रेट बांग्लादेश ने दिवान अच्छा खासा बनाकर रखा है और इस रन रेट से अगर रन बनते रहे तो भारत के लिए मुश्किलें हो सकती हैं।
1: Yes, this can carry them somewhere in the vicinity of 140-145, which will be a very good total considering these conditions.
0: 6.90 का रन रेट इस समय। पांचवी गेंद इस ओवर की, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेला है स्वीपर कवर की तरफ, गेंद को जब तक फील्ड करके वापस किया जाए, एक रन और मुस्तारी के बल्ले से, मुस्तारी पहुंच गई 13 पर और बांग्लादेश का स्कोर 47 रन एक विकेट के नुकसान पर। ग्रुप ए का ये मुकाबला, T20 विश्व कप जो महिलाओं का चल रहा है उसका बेहद अहम मुकाबला, हर एक की निगाह इस मुकाबले पर टिकी हुई है। ग्रुप में हर कोई इस मैच पर नजर बनाए हुआ है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें इस मैच पर टिकी हुई हैं, बांग्लादेश की उम्मीदें इस मैच पर टिकी हुई हैं और ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं नजर टिकाए हुआ होगा क्योंकि वो चार मैचों में चार जीत के बाद सबसे ऊपर जरूर है लेकिन सुरक्षित पूरी तरह से अभी भी नहीं है। अगली गेंद को इस बार पुल करने का प्रयास, उछालते इस गेंद में लेकिन बीट हुई बल्लेबाज और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 7 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 47 एक विकेट के नुकसान पर।
1: 47-1 आफ्टर 7 ओवर्स, टाइडी स्टार्ट फ्रॉम बांग्लादेश एंड दिस पार्टनरशिप ऑल्सो लुकिंग क्वाइट गुड। 39 ऑलरेडी रियलाइज्ड बिटवीन दिलारा अख्तर, रादर जुआरिया फिरदौस, दिलारा अख्तर द ओनली बैटर टू बी डिसमिस्ड, वाज कॉट बाय श्रीचरणी अगेंस्ट a score of 4 when the bowler was Renuka. Since then, India have dropped 4 catches, 4 chances, which has probably cost them a few runs. Shobhana Mustari is looking good. She was dropped on 1 as well. And in the course of this innings, she's also become the third Bangladeshi batter to cross the 1,000 run mark in T20Is for women. So a landmark achievement for her and a good decision to send her in, the experience of her at number 3. What's also interesting, Dharmendra, is that this entire Bangladesh 11 and the squad, in fact, is almost exclusively the batters are all right-handed. So that might explain the delayed arrival of Deepti Sharma, who now begins a fresh over, comes in for a first over in the 8th. Deepti Sharma is also chasing a milestone. If she picks up one wicket, then she will overtake Jhulan Goswami, the great Jhulan Goswami, as the bowler with the maximum international wickets across all formats. Currently tied with Jhulan Goswami at 355. She's also the highest T20 wicket taker in the women's game with 167. The first ball was played away on the onside. The second one, short of a length, pulled away. There's a fielder in the deep though, Smriti Mandana. And that just results in a single for Mustari, for Firdaus rather. So, two singles from the first two balls of Deepti Sharma in the 8th over of this innings. India desperately looking for some breakthroughs after that early wicket. They've been just pegged back a little. And Bangladesh have that batting firepower coming up that they can accelerate if they have some wickets in hand. Mustari shaping up to play. This one just around off stump. Playing

0: from the crease, just going back, in fact, and eventually just forced to tap it back towards Deepthi, who fields, and there's no possibility of a run. Just walking around the crease at the moment, Mustari, perhaps thinking about when she wants to pull the trigger and go for a slightly more aggressive option, this time on the pads, just shuffles across, works it away on the onside. Even though there is a short mid-wicket, she picks up a comfortable single to the right of skipper Harmanpreet Kaur. That brings up the 50 for Bangladesh, 50 for one, 7.4 overs, relatively unhurried comfort. And while they have had those chances, it must be said, in through all of that, there have been some good strokes played by both Firdaus as well as Mustari. Perhaps the pick was that late cut in the previous over by Mustari. The next ball, outside off stump, a little overpitched and punched away towards long on, where Jemima Rodrigues is the fielder. This single takes Firdaus on to 28, Mustari back on strike, Bangladesh at 51 for 1, 4 singles from this over and a dot ball, one ball coming up. Deepthi Sharma looking for that 168th T20 wicket if she can get there. This time, shuffles across and picks it pretty much from the stumps, very close to an LBW had she missed, but plays it straight to short fine, no possibility of a run. 8 overs completed, 51 for 1, 4 runs of the first over by Deepthi Sharma.
1: Jiyan Bangladesh के एक और विकेट की तलाश में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर अभी तक 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन दूसरा विकेट अभी तक भारत को मिला नहीं है। 8 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। शेफाली वर्मा ने 2 ओवर किए, रेणुका सिंह ने 2 ओवर किए, शिचरणी ने 2 ओवर किए, नंदिनी शर्मा ने 1 ओवर किया और अभी अभी दीप्ति शर्मा का 1 ओवर समाप्त हुआ है। एकमात्र सफल गेंदबाज भारत की तरफ से अभी तक रेणुका सिंह, जिन्होंने 2 ओवर में 15 रन देकर 1 सफलता अर्जित की है। दूसरे विकेट की तलाश भारत के लिए, बांग्लादेश ने सिर्फ 1 विकेट दिलारा अख्तर का गंवाया, जिन्होंने 8 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुई थी। नए ओवर की शुरुआत, नंदिनी की पहली गेंद पैट पर टकराई, एक हल्की सी अपील, थोड़ी सी बातचीत इस समय कप्तान और गेंदबाज के बीच, विकेटकीपर भी इस बातचीत में शामिल हुई हैं और वरिष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा भी पहुंच गई हैं। DRS क्या लेंगी, एक लंबी बातचीत चलती हुई, ऐसा लग नहीं रहा कि DRS लिया जाएगा क्योंकि संभवतः गेंद लेग स्टंप को छोड़ रही थी।
0: या एग्जैक्टली व्हाट रिचा घोष अपीयर टू बी इंडिकेटिंग व्हेन शी वाज कॉल्ड इन फॉर दैट लिटिल कॉन्फ्रेंस, नंदिनी वाज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड दैट दैट वाज गोइंग ऑन टू हिट लेग स्टंप, but it would have started around middle and leg and was also shaping down the leg side. So at best it might have stayed marginal because the on-field decision was not out. At best it probably would have been an umpire's call. So maybe it was just okay that they didn't go for it eventually. And the umpire Kim Cotton now just having a word with Harmanpreet Kaur about something. Maybe about follow-through perhaps, just running onto the danger area or something, because she was also pointing towards Nandini Sharma in the process. But it's a dot ball to begin with.
1: Nandini Sharma ka ye over aage badhta hua, dusri gend is over ki karne ke liye taiyar, over the wicket gendbazi kar rahi hai samay, aur is baar gend ko khelna chahti thi on side mein, balle ka kinara liya aur gend 4 run ke liye.
2: Ye laga aabha ka chauka.
1: ये आत्मविश्वास वाला स्ट्रोक था नहीं, खेलना चाहती थी लॉन्ग ऑन की तरफ, बल्ले का मुंह उसी तरफ था लेकिन बल्ले का किनारा लिया इस गेंद ने, थर्ड मैन पर गई ये गेंद, फील्डर थी वहां पर लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर थी, और 4 रन उपयोगी इस समय आता हुआ बांग्लादेश के लिए, बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पर चिंता की लकीरें भारतीय खेमे में गहरी होती हुई। 7वां चौका था बांग्लादेश की इस पारी का, 55 एक विकेट के नुकसान पर। नंदिनी शर्मा इस ओवर की अगली गेंद के साथ, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को हवा में खेला है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, खाली जगह में, नो मैन्स लैंड में ये गेंद गिरी है और इस पर 1 रन आया है बांग्लादेश के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 56 एक विकेट के नुकसान पर, आसमान पूरी तरह से साफ, बादलों का कहीं नामो निशान नहीं, और इस बीच में अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का, यानी फ्री हिट बांग्लादेश के लिए तोहफा।
0: एब्सोल्युटली द इंडियन डिसिप्लिन नाउ एक्सटेंडिंग टू द बोलिंग एज वेल, इट्स अ वेरी मार्जिनल कॉल बट इट्स अ कॉल नॉनदलेस, इट इज अ नो बॉल, इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दैट्स वेयर नंदिनी'स फुट, नॉट एनफ ऑफ इट वाज जस्ट बिहाइंड द क्रीज, द लाइन आल्सो बिलोंगिंग टू द अंपायर, सो नाउ दिस पुट्स प्रेशर ऑन Mustari. Because she was not on strike, but she has the license to really go for it and just rub some salt into the Indian wounds.
1: Bangladesh ki pari ka ye atrikt 5wa run zarur tha, lekin free hit hi bhi ab mila hai aur us par kya kuch hoga, Mustari ki pratikriya. Aur is baar bahut zyada bahar off stump ki ye gend, wide ball ka ishara umpire ka, ek aur atrikt run aur jo wo free hit hai wo jari rahega.

तो अतिरिक्त रन तोहफे में जरूर आया है। और जिस गेंद की हम चर्चा कर रहे थे कि लेग स्टंप को गेंद छोड़ सकती थी, जहां पर बातचीत हुई थी थोड़ी सी कप्तान और गेंदबाज के बीच में, निश्चित रूप से वो गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। 41 गेंदों में 50 रन की ये साझेदारी हो चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी है बांग्लादेश के लिए। भारत का आक्रमण इस समय उतना प्रभावी साबित नहीं हो रहा है, और इसकी वजह वो कैचेस भी हैं जो भारत की तरफ से छूटे हैं। 4 कैच इस मुकाबले में अब तक छूट चुके हैं। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेलना चाहती थी विकेटकीपर के सिर के ऊपर से, धीमी रफ्तार की

0: where the umpires had a couple of chats with her as well as Harmanpreet Kaur about running onto the pitch. And there was also that no ball and the free hit, which seemed like a wide but wasn't given. This time, full ball down the leg side, goes for the sweep. Did she get an edge, perhaps? Yes, just picking up the one for that. And that enables Bangladesh to move along to 62 for 2, brings Nigar Sultana Jyoti back on strike, 1 from 4 for the skipper, who's come in at number 4 today, her familiar position. So Sharmeen Akhtar has been held back. She'll likely play a closing role in the final overs for the Bangladesh team. Fuller ball, punched away on the onside, able to beat Harmanpreet Kaur this time, but in fact Harmanpreet now has moved along to long on and she does the clean up. 4 singles of this over. 63 for 2 after 10 at the halfway stage, and I suspect it will be time for a drinks break.
1: Aadha over is inning ka samapt ho chuka hai. 20 over ka ye mukabla, 10 overon ki samapti, 63 run, 2 wicket ke nuksan par Bangladesh ka score. Pichle 5 overs ki baat kare to bhartiya gendbazon ne achhi wapsi ki hai. Kul milakar 31 run kharch kiye hain antim 5 overon mein aur ek wicket bhi jhatakne mein kamyabi mili hai. रन रेट में भी गिरावट आई है पिछले 5 ओवर्स में, 6.20 का रन रेट रहा है, तो अच्छी वापसी और ये दबाव भारत को बनाए रखना होगा. कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में कम से कम स्कोर पर रोकना होगा, ताकि भारत न सिर्फ इस मुकाबले को जीतने की बेहतर स्थिति में रहे बल्कि नेट रन रेट भी भारत का और ज़्यादा बेहतर हो सके, इसकी भी गुंजाइश बनाए रखनी होगी. 11वें ओवर की शुरुआत, राधा आई है नई गेंदबाज, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, तो राधा ने शुरुआत की है वाइड गेंद के साथ. अतिरिक्त रन बांग्लादेश के खाते में जाता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन, 2 विकेट के नुकसान पर. राधा यादव आज के मैच में शामिल की गई, इस बार थोड़ी सी फ्लाइट दी थी गेंद को, क्रीज से बाहर निकली और इस गेंद को आत्मविश्वास के साथ धकेल दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ. फील्डर भागी उसके पीछे लेकिन आसानी के साथ 2 रन पूरे हुए और इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 66, 2 विकेट के नुकसान पर. रेणुका सिंह ठाकुर थी फील्डर, अच्छी दौड़ उन्होंने लगाई थी और निश्चित रूप से 1 रन तो बचाए ही थे. इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को अपने सामने की तरफ खेला, लॉन्ग ऑन पर गेंद जा रही है, फील्ड किया गया इस गेंद को, 1 रन और आता हुआ. राधा यादव अभी तक को कुछ खास प्रभाव नहीं डाल सकी है इस ओवर में, सीधी सीधी गेंद स्टंप्स पर डालती हुई, हालांकि पहली गेंद उनकी ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी. इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद की लाइन को मिस किया बल्लेबाज ने पूरी तरह से, एक मौका चुका है मुस्तारी ने, क्योंकि इस गेंद को वो चाहती तो आराम से कहीं भी खेल सकती थी.
0: Yeah, I just got surprised. I almost got yorked by the length of it, playing from the crease, and that's been the problem when playing against spinners.
1: अगली गेंद इस बार फिर से फ्लाइट थी गेंद में, क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन फिर से शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ इस गेंद को खेला, फिर से कोई रन नहीं मिलेगा. अच्छा ओवर, पहला गेंद वाइड डालने के बाद थोड़ा सा दबाव था राधा के ऊपर, लेकिन वापसी की है उन्होंने इस ओवर में, और इस ओवर की उनकी ये 5वीं गेंद, इसको हवा में उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर पहुंच पाएंगे. जी हाँ, शेफाली वर्मा पहुंची है, सिर्फ 1 रन मिलेगा और इस 1 रन से स्कोर हो गया अब 68, 2 विकेट के नुकसान पर. अच्छा ओवर चलता हुआ राधा यादव का, कुल मिलाकर अभी तक उन्होंने 5 रन खर्च किए हैं और 1 गेंद अभी आनी बाकी है. अंतिम गेंद इस ओवर की राधा यादव की, इस बार फिर से फ्लाइट थी गेंद में, उसको सामने खेला है फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 11 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 69 रन, 2 विकेट के नुकसान पर.
0: Yeah, those middle overs, that phase where teams often look to consolidate, just look to milk the bowling, try and now work around the pitch for those ones and twos and the odd boundaries if available. And that's where the Indians have to be careful. They cannot let that big partnership prosper, because these two batters are perhaps the most senior batters, the two players in this 11 in any case who have more than 1,000 runs in this format. And that's why if they get set, then they can push on and punish those final few overs. India need to consistently keep looking for wickets in that sense. And that's why Radha Yadav will be a little bit disappointed with that first over, while she was able to put some of those Yorkers in. But apart from that, she was also slightly wavered with her line on a couple of occasions. However, 6 runs conceded of that first over. She's also not had too much exposure in the 11 in this World Cup. As Renuka now comes back for a third over, 2 overs, one of which produced a wicket. Very first ball outside of stump. Nigar plays it with the outside edge of the bat and it runs away for 4 towards third.
2: Ye laga, aabha ka

0: ये लगा आभा का चौका।
1: Both these batters, Dharmendra, they have shown that they know how to use the pace, specially off seam, and work it behind the wicket.
2: जी हाँ, बिल्कुल। इस बार जानबूझकर एक तरह से खेला गया स्ट्रोक था, क्योंकि पता था बल्लेबाज को कि खाली जगह है थर्ड मैन पर, और उसका पूरा फायदा उठाकर चार रन जुटाने में कामयाब रही।
1: Bangladesh moving along to 73 for 2 and Nigar Sultana Jyoti very quickly has moved into double figures, 10 of 9 balls. Mustari is also batting well, 19 of 20 balls. This partnership at the moment, 15 or 14 runs in fact, they came together at 59 for 2. Just outside off stump, opening the face of the blade, playing it away towards Deepthi Sharma, who's fielding at point. No possibility of a run as Deepthi rifles that throw in straight into the gloves of Richa Ghosh. India also looking around the field for some kind of inspiration. Bangladesh still consistently scoring at more than 6 runs per over, which is a positive for them. If they can keep that going towards at least the 14th or 15th over, we know that they have the firepower to go possibly at 10 or even 12 runs per over in those phases. The next ball just jags in and she didn't know a lot about that. Goes up the inside edge and they think about coming in for a second, but that's exceptional fielding from Radha Yadav. Comes in from deep square leg and fields it in front of mid wicket and is able to keep the run scoring down to just that single. So Nigar Sultana Jyoti moves along to 11 of 11 balls. Bangladesh at 74 for 2 as it brings Shubhana Mustari back on strike. The senior pros out in the middle for Bangladesh, desperately looking to forge some partnership from where which will put them into a position from where they can dictate terms, especially considering the fact that they won the toss and elected to bat. Outside off stump yet again, looking for that cut but cannot beat Yastika Bhatia, who's fielding at short third this time around. It goes straight to her. It was a good shot but not placed well enough. Two dot balls already in this over in addition to 1-4 and a single. And that has meant that Bangladesh are at 74 for 2, continue to be at 74 for 2 after 11.4 overs. Two balls left in the 12th over if there are no wides or no balls. We've seen a few wides from Renuka. Richa Ghosh is standing up to the stumps, almost on cue, almost a wide, but played away on the onside, but straight towards Sri Charani, who's fielding at short fine, and it's gone so quickly that there's no possibility of a run. Mustari now just standing with a half teapot, one hand on her waist, the other alongside her bat, just looking away, thinking about where she needs to get the runs away from, because in the last couple of balls she's played a couple of good shots but straight to the fielders, and that has meant that Renuka Singh has bowled dot balls. This time a slower ball just outside off stump, cutting it away towards Deepthi Sharma, but as she dives they have enough time to cut through for a single. 12 overs completed. Bangladesh at 6.25 runs per over have gone up to 75 for 2.
2: Renuka ka एक और बढ़िया ओवर समाप्त हुआ। हालांकि पहली गेंद पर जब उनको चौका लगा था तो थोड़ा सा दबाव था उनके ऊपर, लेकिन अच्छी वापसी की उन्होंने उस दबाव के बावजूद, और इस ओवर में ज्यादा आजादी दी नहीं बांग्लादेश की बल्लेबाजों को। शोभना मुस्तारी 23 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रही है, 2 चौके अभी तक उनकी इस पारी में, और निगार सुल्ताना ने 11 गेंदों में 11 रन बनाए हैं। नए ओवर की शुरुआत होगी। आज बांग्लादेश ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कोई परिवर्तन बांग्लादेश की टीम में पिछले मैच की जो टीम थी उसमें नहीं किया गया, वही टीम उन्होंने उतारी है इस मुकाबले में भी। और हम बार बार बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम ने किस तरह से इस बीच के ओवरों में वापसी की है। अभी तक अगर पिछले 5 ओवर के आंकड़ों को देखें तो 28 रन सिर्फ खर्च किए हैं, एक सफलता अर्जित की है। 5.80 की औसत से रन बने। अगली गेंद, नए ओवर की शुरुआत, राधा यादव की तरफ से पहली गेंद, और इस गेंद को खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, एक रन और मिलेगा। इस एक रन से स्कोर में इजाफा और होता हुआ बांग्लादेश के 76 हो गया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। खास बात दिबायन ये भी है कि अभी तक जो 2 सफलता मिली है भारत को, दोनों 30 गेंदबाजों की तरफ से मिली है, जबकि हम बार बार चर्चा कर रही हैं कि स्पिनर्स के लिए ये पिच काफी मददगार है, उस लिहाज से अभी तो कुछ कामयाबी आई नहीं है। अगली गेंद इस बार खेला है ऑन साइड में डीप मिड विकेट से, जब तक फील्डर आगे की तरफ आए उठाकर गेंद को वापस करें, एक रन और आता हुआ।
1: Yes, and it's also a function of how well Bangladesh, in a sense, have played against the spinners. Not too many risks taken, played from the crease, allowed the ball to turn, but things could be different in the second innings.
2: अगली गेंद इस बार सुरक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से खेला, गेंद को रन को चुरा लिया फील्डर के सामने से, थोड़ी सी धीमी रफ्तार से फील्डर तक गेंद पहुंच रही थी और उसका पूरा अनुमान लगाते हुए इस मौके पर रन को चुराया, एक रन और जुड़ता हुआ इस समय बांग्लादेश के लिए 78 2 विकेट के नुकसान पर। कैच जो आज भारत ने छोड़े हैं 4, उसका क्या नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दबाव निश्चित रूप से भारतीय गेंदबाजों के ऊपर था। वापसी की है भारतीय गेंदबाजों ने, एक रन और इस बीच में आया है, स्कोर हुआ 79।

0: दो विकेट के नुकसान पर, रन रेट 6.24 का। 13वां ओवर चल रहा है, राधा यादव गेंदबाजी कर रही, जिन्हें आज खास तौर पर टीम में शामिल किया गया। 4 गेंदों में 4 रन अभी तक उन्होंने दिए हैं और इस गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर लॉब किया सीधे फील्डर के हाथों में, एक कैच आसान सा मिडा पर और दीप्ति शर्मा ने यह कैच लपका, भारत की अनुभवी फील्डर, बहुत आसान सा कैच।
1: Yes, very well taken and well bowled by Radha, just changing the length of it. For a change, we saw Mustari using her feet, trying to be positive, just skipping down the wicket and almost pulling it off. But I suspect that's what made Radha just change, alter the length a little bit, and that's forced her to almost yawk herself and not quite get the right kind of elevation. The idea was right, the execution not quite so. Wanted to clear mid off, but ended up chipping it straight to Deepthi Sharma. Big wicket because she was looking dangerous and she was dropped on one. So that will make Nandini Sharma feel a lot better now that Shobhana Mustari has to go back. 22 from 26 balls, caught Deepthi, bowled Radha.
0: जी हाँ, ये तीसरी सफलता भारत के लिए और हम चर्चा कर रहे थे कि स्पिनर्स को अभी तक भारत की तरफ से कोई कामयाबी नहीं मिली है, राधा यादव ने वो सफलता स्पिनर्स की तरफ से भारत को दिलाई है और तीसरा विकेट भारत के लिए उन्होंने झटका है। अगर इस मुकाबले के अभी तक सभी विकेटों की बात करें, एक विकेट मिला था रेणुका सिंह यादव को, नंदिनी शर्मा ने दूसरा विकेट लिया था और अब राधा यादव के खाते में एक विकेट, तो थोड़ी सी

0: ये ओवर एक तरह से वापसी कराने में बांग्लादेश को कामयाब रहा है इस मैच में। एक दबाव बढ़ रहा था, बन रहा था बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन नंदिनी के इस ओवर से जो 17 रन का ओवर रहा है वो दबाव काफ़ी हद तक हटता हुआ और स्कोर बांग्लादेश का बढ़ता हुआ 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस मुकाबले में अगर 140 के आसपास स्कोर हो गया तो इतना आसान होगा नहीं भारतीय टीम के लिए भी। हालांकि स्पिनर्स को अभी तक कुछ खास मदद भारतीय स्पिनर्स को खासतौर पर नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दूसरी पारी में ज्यादा गेंदबाजों के लिए मदद होगी इस पिच में।
1: एब्सोल्युटली। एंड द अदर कंसर्न धर्मेंद्र इज दैट इंडिया शुडंट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेट रन रेट। फर्स्ट एम शुड बी वॉट एवर बांग्लादेश मेक, द फर्स्ट एम शुड बी टू ट्राई एंड गेट पास दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी ओवर्स इट टेक्स, बिकॉज इफ दे स्टार्ट ऑब्सेसिंग ओवर ट्राइंग टू गेट देयर इन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ओवर्स, then there's every likelihood that they'll bring some of the Bangladesh bowlers into this particular equation. And on this pitch, I suspect the Bangladesh attack, which is quite spin heavy, will also enjoy themselves. There's a lot of experience in their spinners, and just the one experienced off spinner which they didn't pick today, Sultana Khatun, who has a very good record against India. I was expecting them to perhaps pick her, but they've gone with the combination which won or did the trick against Pakistan in the previous match.
0: जहाँ तक इस मुकाबले की बात है, टॉस बांग्लादेश ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिलारा अख्तर और जुआरिया फिरदौस ने पारी की शुरुआत की, जल्दी आउट हो गए अख्तर जिन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए और रेणुका सिंह की शिकार हुई। शिचरणी ने उनका कैच लपका था, उसके बाद एक अच्छी साझेदारी हुई 50 से अधिक रनों की फिरदौस और शोभना मुस्तारी के बीच में। दूसरा विकेट बांग्लादेश ने जब गंवाया तो वो विकेट था फिरदौस का जो 33 रन बनाकर आउट हुई। अच्छी पारी उन्होंने खेली, 31 गेंदों में 5 चौके उन्होंने लगाए थे, 106.45 की स्ट्राइक से रन रेट बनाए। और उसके बाद शोभना मुस्तारी तीसरा शिकार भारत के लिए हुई और भारत की तरफ से उनको राधा यादव ने आउट किया। दीप्ति शर्मा ने उनका कैच लपका था, 26 गेंदों में 22 रन बनाए थे, 2 चौके लगाए थे। इस समय क्रीज पर कप्तान निगार सुल्ताना और उनके साथ शर्मिन अख्तर दोनों इस समय बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं और इस पहली गेंद का नए ओवर की शुरुआत कर रही हैं श्रीचरणी के शर्मिन, और इस गेंद को स्वीप किया है स्क्वायर लगम पार के पीछे की तरफ। 1 रन और जोड़ने में कामयाब रही हैं इस नए ओवर की पहली गेंद पर। स्कोर बढ़ता हुआ 97, 3 विकेट के नुकसान पर। 15वां ओवर शुरू हुआ है, अभी भी बहुत सारे ओवर बचे हुए हैं बांग्लादेश के लिए, और इस अंदाज में अगर बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करती रही, विकेट सुरक्षित रहे, तो 150 तक बेस्कोर जा सकता है। दूसरी गेंद इस बार धीमी रफ्तार की गेंद, हवा में थोड़ी सी ज्यादा गेंद को छोड़ा था इस मौके पर शिचरणी ने, और अंत में सिर्फ आगे आकर बल्ले को दिखाते हुए मुंह उसका खोलते हुए सामने की तरफ खेला। कोई रन इस मौके पर नहीं बनेगा। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेला है सामने की तरफ सुरक्षात्मक तरीके से फॉलो थ्रू में। 7 से 14 ओवरों के बीच की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 56 रन बनाए बांग्लादेश की टीम ने और 2 विकेट गंवाए थे। धन्यवाद स्कोरर हमारे वेंकट बाला रेड्डी इस जानकारी के लिए। अगली गेंद इस ओवर की, और इस बार क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का प्रयास पूरी तरह से गेंद की पिच तक नहीं पहुंच सकी। अंत में बल्ला भर अड़ाया, अंदरूनी निगी किनारा लिया इस गेंद ने बल्ले का और मिडॉन की तरफ गेंद गई 1 रन के लिए। धीरे धीरे बांग्लादेश 100 रन के आंकड़े की तरफ बढ़ता हुआ, ये 15वां ओवर चल रहा है। लक्ष्य निश्चित रूप से बांग्लादेश के दिमाग में, उनके बल्लेबाजों के दिमाग में 150 का होगा। अगली गेंद इस बार बल्ले का मुंह खोला, थर्ड मैन की तरफ खेला, फील्डर भाग रही है उसके पीछे, गेंद को क्या रोक पाएंगी एक तेज रफ्तार से जाती हुई गेंद। हालांकि टाइव लगाकर इस गेंद को रोकने में कामयाबी और निश्चित रूप से 4 रन बचाए हैं, 2 रन ही मिलेंगे इस मौके पर। इन 2 रनों से स्कोर जा पहुंचा बांग्लादेश का ठीक 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस 15वें ओवर में। अच्छी गेंदबाजी श्रीचरणी की तरफ से, लेकिन शर्मिन की तरफ से भी अच्छी बल्लेबाजी। उन्होंने देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी जगह है, उन्होंने बल्ले का मुंह खोला और उस खाली जगह में गेंद को प्लेस सा कर दिया। 2 रन के साथ 100 रन हो गए स्कोर। अगली गेंद, और इस बार बीट हुए हैं पूरी तरह से ऑफ स्टंप के बाहर, हल्की सी टर्न हुई थी गेंद, ओवर समाप्त हुआ 15 ओवरों के बाद। स्कोर बांग्लादेश का 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
1: Yeah, it's a good position to be in, 100 for 3 after 15. You would think that from here, Bangladesh with those wickets in hand can aim for somewhere in the vicinity of 140 to 150, which we have right from the start said that will be a competitive total irrespective of how

0: But this has probably meant the difference between 140 and 150. Had Nigar Sultana Jyoti been out there, the chances of that extra 15 or 20 runs would always have loomed over the Indians.
1: निश्चित रूप से यहाँ पर एक मौका जरूर इस विकेट के बाद बांग्लादेश ने गंवाया है. कप्तान का आउट होना परेशानी का कारण बन सकता है और वो जो रन है 10 से 15 रन पीछे रह सकती है बांग्लादेश की टीम. और अगली गेंद को इस बार नई बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेला एक रन के लिए. शोरना अख्तर नई बल्लेबाज आई है और इस एक रन से अपना खाता खोला. स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन 4 विकेट के नुकसान पर. शर्मिन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी अब आन पड़ी है. इस बार उन्होंने लेग स्टंप की तरफ हटकर थोड़ा सा स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी. खेला इस गेंद को स्वीपर कवर की तरफ. एक रन इस मौके पर उनको मिला है और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर. राधा यादव की अच्छी गेंदबाजी अभी तक भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज. हालांकि एक कैच आज भी उनसे छूटा था लेकिन उस दबाव से बाहर निकलते हुए दो सफलताएं अब तक अर्जित की. अगली गेंद को इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला. एक रन दूसरे रन के लिए पलटना चाहती थी लेकिन फील्डर तेजी के साथ इस गेंद पर हावी हुई. दूसरे रन की संभावना को तत्काल समाप्त किया. इस एक रन से स्कोर हो गया 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर. राधा यादव को थोड़ी सी मदद मिली है. जब गेंद को उन्होंने हवा में छोड़ा है फ्लाइट दी है तो टर्न भी थोड़ी बहुत उनको हासिल हुई है. इस बार लगभग फुल टॉस गेंद ड्राइव किया. एक रन और आता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर. इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने सफलता अर्जित की थी और अभी तक स्कोर 110 हुआ है. एक गेंद अभी भी इस ओवर की आनी बाकी है. इस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से खेला. एक रन के लिए भागी गेंदबाज खुद पहुंची गेंद तक. थ्रो किया स्टंप्स की तरफ लेकिन स्टंप पर गेंद टकराई नहीं. सुरक्षित अपनी क्रीज में दोनों बल्लेबाज. इसके साथ ही 17वें ओवर की समाप्ति. स्कोर 111 है 4 विकेट के नुकसान पर. रन रेट इस समय बांग्लादेश का 6.53 का. और ये जो विकेट गंवाया बांग्लादेश ने पिछले ओवर में कप्तान का, ये कुछ रनों में कटौती कर सकता है बांग्लादेश के लिए.
0: It certainly could, absolutely, but let's not forget Shorna Akhtar is the player in form in the match against Pakistan. Scored 39 not out from 22 balls. Just 19 years of age, primarily plays as a leg spinner, but has the ability to hit it long and wide. And that's what the Indians must be wary of. And who knew? Radha Yadav, restored to the team today, is currently the best bowler with 2 wickets against her name. Those wickets coming of Shobana Mustari for 22 and Nigar Sultana Jyoti, the skipper, for 32. One of them caught by Deepti Sharma and the other stumped by Richa Ghosh. So India, in spite of some lapses in the field, now seem to have got their house in order as Deepti Sharma now comes in for her third, or rather for her fourth and final over, the 18th of the innings. Perhaps we'll be looking to finish with seam then, with one over each left for Renuka as well as Nandini after this. This one was played in towards deep mid wicket, which picks up another single and takes the score with that particular single along to 112. Now for those loss of 4 wickets that they have lost in the past. 112 for 4, 17.1 overs bowled. The maximum that they've ever managed against India was 142, but that was chasing one of those two wick,

0: which will mean that despite a dot ball, it is a free hit now for Shorna Akhtar, and she needs no second invitation, but this will probably just help her free herself up a little bit more. The youngster, the teenager, 19 years of age, takes strike, skips down the wicket, plays it away on the offside, and it's just got in through the infield, and this is running away for a four after a long time. India have bowled a few no balls, and this is the first one perhaps which has been properly punished.
1: बिल्कुल, और खास तौर पर दीपी शर्मा का ये दूसरा नो बॉल था, और इस मौके पर जरूर फायदा उठाने में बांग्लादेश की बल्लेबाज कामयाब रही हैं।
0: Shorna Akhtar is a danger woman in this situation because she can wield the long handle effectively, as she showed. She was able to access the offside with a strong ring of fielders. This time looking to go leg side with the turn and plays it away on the onside. Wants to, but very quick fielding yet again from the Indians. N. Sricharani was very quick to get across from square leg, and that single takes the score along to 119 in the process. 119 for 4 at the moment. And thanks to that no ball, this is turning out to be a remarkably good over from the Bangladeshi perspective, because they've already picked up 8 runs and there are still 2 balls, legal balls, to come. Deepthi round the wicket, worked away on the onside, almost returning to her on the bounce, and then she whips in a throw at the striker's end, almost as if to tell Sharmeen Akhtar that there's no getting away from me, let's not think about pinching a single of that one. Last ball of the spell from Deepthi. Remember, poised on 355 international wickets, needs that one wicket to move ahead of Julan Goswami, but looks like the legend will hold on to that record, joint record, for the moment, unless something happens of this last ball. Deepthi comes down the wicket, just past Deepthi, and this has been struck nicely enough, but it won't run away for four, because Jemima Rodriguez is very good to clean up and restrict the scoring to just one. 120 for four, 18 overs bowled, just 2 overs to come.
1: तो 2 ओवरों की बल्लेबाजी और बांग्लादेश की टीम को करनी है, और इस समय बांग्लादेश की टीम अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है. रनों के लिहाज से अगर बात करें, 120 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर. दीप्ति शर्मा को इस मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला, 4 ओवरों की गेंदबाजी उन्होंने कर ली है, जो अधिकतम गेंदबाजी की जा सकती है. 23 रन खर्च किए, कोई सफलता उनके खाते में आई नहीं. इकॉनमी उनकी 5.75 की रही. राधा यादव सबसे सफल गेंदबाज, 3 ओवरों में 15 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए हैं. लेकिन अब जो ये नया ओवर होगा, 19वां ओवर बांग्लादेश की पारी का, ये जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगी? क्या राधा यादव पर दाव लगाएंगी कप्तान हरमनप्रीत कौर? ये देखना दिलचस्प होगा इस समय, क्योंकि अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो उसमें रेणुका सिंह ठाकुर का ओवर भी बचा हुआ है और नंदिनी शर्मा का भी ओवर बचा हुआ है. तो इंतजार इस बात का कि गेंदबाजी किसके हाथों में सौंपी जाती है. शर्मिन अख्तर 12 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं, और शोरना अख्तर ने 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं. कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है.

0: ओवर की यह दूसरी गेंद, हवा में इस गेंद को उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर थी लेकिन अनुमान उतना सही था नहीं। एक रन और फिर दूसरे रन के लिए भी तेजी के साथ पलटी, दो रन और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 124 पांच विकेट के नुकसान पर। राधा यादव के हाथ में ही गेंदबाजी है, राधा की अगली गेंद को इस बार खेला है ऑन साइड में, फील्डर पहुंच पाएंगी क्या? नहीं, जी नहीं, इस मौके पर नहीं पहुंच पाएंगी। चार रन आता हुआ,
1: ये लगा आभा का चौका।
2: Yeah, it looks like an interesting decision because from the look of things, Sharmeen Akhtar has been retired out. So that has meant that Ritu Moni has come in and she's been more than effective. 8 of 3 balls. So perfect start for this little cameo from Ritu.
0: जी हाँ, तो एक विकेट हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने गेंदबाज के जरिए नहीं गंवाया बल्कि रिटायर्ड आउट हुई हैं बल्लेबाज। अगली गेंद और इस बार स्टंप्स पर जाकर सीधी टकराई है गेंद, एक और सफलता इस समय राधा यादव के लिए, भारत के लिए एक और कामयाबी और बांग्लादेश ने इस बीच अपना छठा विकेट गंवाया।
2: Radha firing it in. She's done this well. She's actually stuck to this fuller length, almost a block hole delivery. And Ritu Moni was just looking to make some room and access the offside. But as a result of the accuracy of the ball, it's the old dictum, you miss, I hit. And that's exactly what happened. A little bit of turn and that put paid to all hopes of Ritu. But she's done a good job. She's scored 8 of 4. And it's just the kind of finishing kick which this Bangladesh innings needed as the 6th wicket falls eventually for 128.
0: तो रितु मुनि इस गेंद को यॉर्क करा बैठी और अपना विकेट उन्होंने गंवाया है। बहुत जोरदार वापसी भारत की कुल मिलाकर, हालांकि रन पिछले 5 ओवर में बांग्लादेश ने तेज गति के साथ बनाए हैं, 42 रन बनाए हैं, 3 विकेट भी गंवाए हैं, इस वजह से थोड़ा सा दबाव बढ़ा है बांग्लादेश के ऊपर। क्या लक्ष्य होगा भारत के लिए इस मुकाबले में, ये देखना दिलचस्प होगा। सुवर्णा अख्तर अभी भी मैदान पर मौजूद हैं, 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। नई बल्लेबाज राबिया आई है मैदान पर, राधा यादव की गेंदबाजी का सामना करेंगी। 3 विकेट ले चुकी हैं राधा यादव। अगली गेंद इस बार स्वीप किया है इस गेंद को बैकवर्ड स्कारले की तरफ, फील्डर पीछे मौजूद हैं, एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन से खाता खोला नई बल्लेबाज राबिया ने और स्कोर बढ़ता हुआ 129 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी जो एक लक्ष्य माना जा रहा था कि हो सकता है इस मैदान पर कठिन 130 135 के आसपास का, उस तरफ तो बांग्लादेश की टीम पहुंच गई है। उनकी गेंदबाज कितनी प्रभावी रहेंगी भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी के खिलाफ, यह देखना होगा। इस बार क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को हवा में खेला था, मिस फील्डिंग या कहीं की गेंद तक पहुंच नहीं सकी। 4 रन,
1: ये लगा आभा का चौका।
0: मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी मौजूद थी, लगभग उनके हाथों में गेंद पहुंच गई थी, डाइव जरूर लगाई इस गेंद के पीछे लेकिन पहुंच नहीं सकी, लगभग उनकी उंगलियों को छूते हुए गेंद पहुंची 4 रन के लिए।
2: एंड दिस इज व्हाई समबडी लाइक शोना अख्तर इज सो यूजफुल फॉर दीज पर्टिकुलर सिचुएशंस बिकॉज़ शी कैन बी अनप्रेडिक्टेबल एज अ बैटर। वी हैव सीन 2 ऑफ दोस बाउंड्रीज इन दैट सिमिलर पोजीशन, जस्ट कमिंग डाउन द विकेट एंड देन मेकिंग श्योर दैट शी पियर्सेस द ऑफसाइड फील्ड विद अ लॉट ऑफ पावर, एंड इट वाज दैट पावर एंड द प्लेसमेंट व्हिच कंप्लीटली फॉक्स्ड दीप्ति शर्मा हु वाज फील्डिंग एट दैट मिड ऑफ पोजीशन, डाइविंग अवे टू हिज लेफ्ट बट इन वेन। So Radha Yadav finishes her 4 overs, outstanding effort from her 3 for 28 from her 4 overs. The other bowlers to have bowled out Deepti, none for 23 from 4. And apart from that, Nandini, N. Sri Charani, Renuka all with 3 overs against their name and Shefali Verma with 2. So the big question will be who comes back for that final over. Maybe Sri Charani, considering she has been the form bowler. And indeed, the ball has been handed to her, but it also hands the opportunity to the Bangladeshis to perhaps go for a few big shots against spin. It's Rabia who herself is a leg spinner, now goes for the sweep of the very first ball, nails it straight towards Radha Yadav, fielding at deep backward square leg. One of the first over, first ball of the last over. 134 for 6, Rabia on to 2 from 2 balls and brings Shorna Akhtar back on strike, 13 from 8 inclusive of those 2 outstanding boundaries that we saw right through the offside. 6.99 the current run rate, they'll be quite pleased with it Bangladesh. It sees them on course to reach that 140 mark, which we have mentioned a few times on this commentary. Whether that is enough or not, time will tell. But as a fielding side or as a captain, Nigar Sultana Jyoti will be very happy with the kind of start that they've made after winning the toss and batting. Sri Charani comes in again, looks for the Yorker, but it's very well bowled. Shorna Akhtar was making room away on the offside, on the onside rather, and because of that, she almost accessed.

0: कप्तान निगार सुल्ताना के 32 रन और ओपनिंग बैटर फिरदौस के 33 रन की बदौलत बांग्लादेश ने भारत को लक्ष्य दिया है 137 रन का। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण तिखिया
1: और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का

0: एक पैनल मौजूद है हमारे साथ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा मौजूद है। चेतन बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका।
1: धन्यवाद।
0: विजय धैया हमारे साथ मौजूद है जो एक और पूर्व भारतीय
2: क्रिकेटर। ज्योति राधोशी वाज सेकंड हाई स्कोरर विद 32, द टॉप स्कोर कमिंग फ्रॉम जुआरिया फरदौस हु स्कोर 33 and then a couple of useful contributions down the order as well, the likes of Shobana Akhtar with 13, Shobana Mustari with 22, and for India the most successful bowler Radha Yadav 3 for 28 and N. Sri Charani with 2 for 21. Stay tuned, we'll be back with the chase, but before that the next program is Free Hit 2020.

0: कप्तान निगार सुल्ताना के 32 रन और ओपनिंग बैटर फिरदौस के 33 रन की बदौलत बांग्लादेश ने भारत को लक्ष्य दिया है 137 रन का। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट दर्पण तिखिया
1: और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा मौजूद है। चेतन, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका।
2: धन्यवाद।
1: विजय धैया हमारे साथ मौजूद है जो एक और पूर्व भारतीय

0: पूरा कर ले।
1: जी बिल्कुल, ड्रॉप कैचेस भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से चिंता का विषय है, लेकिन विजय एक जो पॉजिटिव आज देखने को मिला है वो है राधा यादव की वापसी। अपने पहले ही मैच में उन्होंने 3 विकेट, वो भी 3 इम्पॉर्टेंट विकेट, पहला शोभना मुस्तारी का, उसके बाद कप्तान निगार सुल्तानी का विकेट और फिर बाद में रितु मोनी का विकेट। शानदार कमबैक,
2: बहुत ही बढ़िया कमबैक, और आई थिंक ये एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा बहुत बढ़िया रहता है, और इसी वजह से शायद जो भारतीय थिंक टैंक है उन्होंने ये सोचा होगा कि आप एक उस खिलाड़ी को जिसका कॉन्फिडेंस एक अपोजिशन के खिलाफ बढ़िया रहता है उनको आप ये मौका दें। लेकिन एक और चीज़ की फिर से यहाँ पर पुष्टि हुई है कि एक स्पिनर को खिलाया गया इस मैच में जो इस टूर्नामेंट में उनका पहला मैच है, वो आके अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप बॉलिंग कार्ड की तरफ नज़र डालेंगे तो 2 मीडियम पेसर्स आपके आपको वहाँ दिखेंगे जिन्होंने अपने 4 ओवर पूरे नहीं किए, तो जो चिंता का सबब आपके लिए बना हुआ है आज वो प्रेशर जो आप हम बात कर रहे हैं वो पहले 6 ओवरों में बहुत बढ़िया बैटर्स ने जो थे बांग्लादेश के उन्होंने भारतीय टीम के ऊपर डाला। मुझे लगता है कि अगर आप मैच शुरू होने से पहले उन्हें इतने रन देते तो शायद वो ले लेते, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी जहां पर वो ये डिसअपॉइंटेड होंगे कि उन्होंने 150 का आंकड़ा पार नहीं किया।
3: और इसी चीज की हम चर्चा पहले प्रोग्राम में भी कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 16 खिलाड़ियों का इस्तेमाल भारतीय टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में कर चुकी है, 15 का स्क्वाड होता है, श्रेयंका पाटिल चोट के चलते बाहर हो गई, 16 खिलाड़ियों का प्रयोग भारतीय टीम कर चुकी है। और शशांक, हमने देखा कि कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने अपने 15 के 15 खिलाड़ी अभी तक इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल किए हों, कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि शायद अभी भी हम खोज कर रहे हैं उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन की।
0: डेफिनेटली बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, इससे ये भी पता चलता है कि प्रिपरेशन के लेवल पे कुछ कमियां रह गई थी, सिलेक्शन और प्रिपरेशन और एक वेल इंटीग्रेटेड विजन के साथ इस टूर्नामेंट में हम शायद नहीं आ पाए, या पहले मैचेस में खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो था उम्मीद से नीचे रह गया। तो ये तय बात है कि आप इतने सारे खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, तो एक तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी घटता है, दूसरा कि वो एक जो 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन होता है जो सब एक साथ टीम में मैदान में उतरती हैं और फिर खेलती हैं, वो भी कई बार वो ब्रेक होता है, तो कुल मिलाकर के ये कहीं से भी आदर्श स्थिति नहीं है, और चैंपियन टीम्स इस तरह से तो डेफिनेटली नहीं उतरती हैं मैदान में।
1: जी चेतन, आपने बात करी क्योंकि ड्रॉप कैचेस हमारी फील्डिंग की, लेकिन तारीफ करनी होगी बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना की भी। कई सारे रिकॉर्ड्स हैं T20 में उनके नाम, बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड उनके नाम है, सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, और T20 में शतक जड़ने वाली पहली बांग्लादेशी खिलाड़ी भी हैं वो।
4: देखिए, आज 32 रन बनाए, और अगर हम उनका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 118 के स्ट्राइक रेट से जब आप रन्स बनाते हैं वहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं मिडल ऑर्डर की तरफ से रन्स बने हैं। देखिए, हर समय कहते हैं कि अगर ऊपर से अगर आपको रन ना मिले, जैसे पहली विकेट 8 रन पर गिर गई थी, उसके बाद आपको एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी, साझेदारियों की जरूरत थी, साझेदारियों को आप बुनेंगे तभी आप मैच में आगे जा पाएंगे। और आप बांग्लादेश की बैटिंग देखें, नंबर 2, 3, 4 सबने आके रन बनाए हैं, बेशक 33, 22, 32, तो अगर आप उस स्थिति में टीम को लाकर खड़ा कर देते हैं, जैसे विजय ने भी कहा कि 15 रन 14 और 15 रन, 150 साइकोलॉजिकल आपके मतलब जहन में चीज चलती रहती है कि 150 का टारगेट है, बट 137 जो चेज करना है वो भी चीज़ें इतनी आसान होगी नहीं। देखिए, बनाना पड़ेगा, उन्होंने रन ऑन बोर्ड लगा दिए हैं, आपको करने पड़ेंगे, और चेज हर समय प्रेशर में चीज़ें आसान नहीं होती, तो लेट्स होप एक अच्छी साझेदारी ऊपर से पन पे अगर आप एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे मिडल ऑर्डर के लिए, यू विल डेफिनेटली विन दिस गेम।
2: मैं एक बार ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपने बांग्लादेशी कप्तान के बारे में बात करी, कुछ लोग कप्तान होते हैं और कुछ लोग नायक होते हैं, ये उनमें से हैं। इनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो इनका रोल सिर्फ वही नहीं है जो फील्ड में नज़र आता है, इनका रोल फील्ड के बाहर भी है। कुछ ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो आप जिनको आप आदर्श मानकर वो इंस्पायर करते हैं, तो अगर बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट के बारे में आप बात करेंगे तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी यंग लड़कियों को वहाँ पर इंस्पायर किया है इस गेम को खेलने के लिए, तो इनका जो कद है वो और ज़्यादा बड़ा है उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर, और वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी जब आप बात करते हैं कुछ नायकों की तो उनका वहाँ जिक्र होता है, ये उस तरीके की खिलाड़ी हैं।
1: जी, नायकों पर हम फिर से आएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
5: जी नमस्कार, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल

0: अभिनाश जी
1: जी, अपना सवाल पूछे।
0: जी, मेरा सवाल ये कि भारत की फील्डिंग में और सुधार की जरूरत, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए फील्डिंग में आज के जिस तरह से ड्रॉप करें बॉलर्स को और के आगे ड्रॉप करना संभव होता है, लेकिन और इस मैच के बाद जो भारत का दो और ढाई जो मैच है रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो मैच कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे साउथ अफ्रीका भी अपनी तरफ से सेमी फाइनल की जगह बनाने की कोशिश करेगी, वहीं पर भारत को भी अगर ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए तो भारत के लिए आगे जाना मुश्किल पड़ जाएगा, तो इस मैच से क्या मतलब कि रन रेट से कुछ अंतर पड़ सकता है, इसमें फर्क पड़ेगा
2: जी? तो भारत ने कैच ड्रॉप किए लगातार ये चर्चा का विषय है, और शशांक आपकी तरफ आऊंगा मैं। पहले छह ओवर में हमने देखा चार कैच ड्रॉप हुए, पाकिस्तान के खिलाफ भी तीन कैच ड्रॉप हुए थे, कैसे देखते हैं आप इसको, और ऐसे में फील्डिंग कोच की भूमिका को कैसे देखते हैं?
3: ये बड़ा दिस इज रियली ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक भारत की टीम डेफिनेटली तीन चार जो बड़ी टीम्स हैं महिला क्रिकेट में वर्ल्ड में, उनमें से एक टीम है, इस प्रकार की फील्डिंग का प्रदर्शन जो है, मुझे लगता है कि पहले भी कैचेस छूटते हैं मैचेस में और मिस फील्डिंग्स होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, राधा यादव जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स हैं उन्होंने दो कैच छोड़े थे और आज भी उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ा, तो और बहुत सारी मिसफील्डिंग्स हुई, तो इससे ये क्यों हो रहा है ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता ही है फील्डिंग कोच पे, लेकिन इतने सीनियर प्लेयर्स हैं और अनुभवी खिलाड़ी हैं, बड़े मैचेस का इनको अनुभव है, तो ये और ये एक ऐसी टीम से खेल रही हैं जहाँ पे इनके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं है, दे आर बिग फेवरेट्स टू विन दिस मैच, और बांग्लादेश को 23 में 20 मैचेस में हराया हुआ है इंडिया ने इसके पहले, तो इससे मुझे लगता है कि एक जिसको डिस्पिरिटेड टीम बोलते हैं ना, डिस्पिरिटेड और ये हारी हुई टीम, जैसे कि इनको लगता है कि अब ये टूर्नामेंट में इनका कोई भविष्य नहीं है, और जो फील्डिंग प्रदर्शन है इस मैच में उनकी बैटिंग पे शायद असर पड़ सकता है, और ये 137 रन जो हैं वो उतने आसान नहीं होंगे, और यही अगर ऐसा ही प्रदर्शन भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा तब तो कोई मतलब क्या कहें, आप समझ सकते हैं जो सबसे अच्छी टीम है
2: जी। तो अपने श्रोताओं को बता दें कि बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया भारतीय टीम के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है T20Is में, तो 137 की चुनौती है। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं डिस्कस करने लायक, विजय फटाफट उन पर नजर डालेंगे। श्री चरणी ने आज एक बार फिर इंप्रेस किया, फिर दो विकेटें ली है, और इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाली वो खिलाड़ी बन गई है,
4: पहला वर्ल्ड कप खेल रही हैं अपने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप है उनकी तरफ अगर नजर डालेंगे तो वो कौन सी ओवर डालती हैं, सबसे मुश्किल ओवर आपको डालती हुई नजर आती हैं, पहले छह ओवर में डालती हैं और उसके बाद बहुत कम है वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखें कि आखिरी ओवर में T20 क्रिकेट के अंदर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी करते हुए दिखे, और वो भी एक ऐसी खिलाड़ी जो अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आई है, नंबर 1 बॉलर है समय T20 क्रिकेट में, जहां तक वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में बात करें, ये सिर्फ स्किल के बारे में नहीं बताता है, ये इस यंगस्टर के माइंडसेट के बारे में भी बताता है कि वो रूप से भी कितनी मजबूत है।
5: जी चेतन, अभी बात की विजय ने नायकों की, जैसे आज निगार सुल्ताना की परफॉर्मेंस रही है, और पिछले कुछ मैचेस में हम और खिलाड़ियों को देख चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका के लिए मारिजान काप ने वो काम किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिस पेरी ने वो काम किया पाकिस्तान के विरुद्ध अपने मैच में। अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो भारत के सबसे अनुभवी प्लेयर हरमनप्रीत कौर, 201वां T20 उनका ये होगा, उनको स्टार्ट हर बार मिल रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं, एंड शी इज़ नॉट प्लेइंग हर नेचुरल गेम, एक शेल में दिख रही हैं।
6: देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोशिश करते हैं, वो कोशिशें आपकी कामयाब होती नहीं है। हरमनप्रीत मतलब 200 अभी आपने भी कहा 201 का इंटरनेशनल गेम्स खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए वर्ल्ड कप का प्रेशर है और ये एक प्लेयर आपको मैचेस जिता नहीं पाएगा, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं ला पाएगा। देखिए इट हैज़ टू बी ए कलेक्टिव एफर्ट। स्मृति की आप बात करें, शिफाली की बात करें, जमीमा की बात करें, दे हैव टू कम कलेक्टिव। देखिए बहुत भरोसा है, मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि ऊपर के क्रम के बल्लेबाज जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे ना, आप मैचेस नहीं जीत पाएंगे। आज भी ये अप्लाई करता है भारतीय टीम को, आप जाइए ऊपर से रन्स बनाइए, शेफाली और स्मृति की जैसे हम बात करते हैं, ऊपर से अच्छा स्टार्ट दें, देन ऑटोमेटिकली आपके पास जमीमा है, उसके बाद आपके पास हरमनप्रीत है। आप देखिए ऊपर से स्टार्ट मिलेगा, हर समय मिडिल ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन करेगा, जब ऊपर से स्टार्ट नहीं

0: मिलता ना देन स्ट्रगल
1: एफएम में 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। चलिए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।
2: फॉर दीस टू प्लेयर्स
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
4: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
3: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
4: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
3: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन के शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त

60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाश

0: में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्य में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बाश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा की देवोशिष सामंतराय, भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बाश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा की देवोशिष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

0: इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपने विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM में 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। रात्रि के 9 बज रहे हैं। चलिए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम बांग्लादेश

0: ट्रेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेली जा रही मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण।
1: लक्ष्य भी बहुत बड़ा तो रखा नहीं है, अगर भारतीय बल्लेबाजी की गहराई को देखें तो बांग्लादेश ने बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया है भारत को। 137 रन का लक्ष्य भारत की बल्लेबाजी के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं है। वैसे में कप्तान की मौजूदगी अगर मैदान पर नहीं रहती है तो फिर बांग्लादेश की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि वो कैच लपकने की एक कोशिश उन्होंने ज़रूर की थी, पूरी तरह से आप चांस था, वो पूरी तरह से वो कैच नहीं था क्योंकि जो अनुमान लगा रही थी ऑफ साइड में वो जा रही थी, लेकिन वो गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर टकराने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लेग स्टंप की तरफ जाने लगी और वहां पर जो पूर्वानुमान था उनका उतना सटीक नहीं हो सका। कैच लपकने की उन्होंने कोशिश की, उनका ग्लव्स जमीन पर टकराया और उंगलियां कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशान हुई उनकी, उसमें थोड़ी सी चोट आई है। हालांकि अभी उपचार चल रहा है, कितनी फिट है ये देखना होगा।
2: Yeah, 31 without loss. This is still the third over in progress. A little fortuitous with that last boundary, and one also felt that perhaps there was absolutely no bat. Maybe just hitting some foot marks and just skidding through. Eventually, everything's ready. The next ball driven on the up, and this time the catch has been taken. India suffer their first blow. Smriti Mandhana will have to go back. There might be a boundary check for this, but Rabia Khan, from the look of things, has pulled off an absolute blinder for Maruf Akhtar.
1: बहुत बड़ा नुकसान ये भारत के लिए। स्मृति मानधना चल पड़ी हैं पवेलियन की तरफ और भारत को ये संभवतः पहला झटका लगा है। हालांकि अभी अंपायर उस पर निगाह जरूर डालेंगी कि कैच पूरी तरह से सफाई से पकड़ा गया है या नहीं, लेकिन स्मृति मानधना चल पड़ी हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ। अंपायर ने उन्हें रुकने का इशारा किया है, वो अब रुकी हैं और अब तीसरे अंपायर द्वारा यह फैसला दिया जाएगा कि कैच सफाई से पकड़ा गया है या नहीं। स्मृति मानधना ने इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया था, हवा में थी थोड़ी देर के लिए गेंद और बहुत अच्छी फील्डिंग इस मौके पर।
2: एब्सोल्युटली दैट बाउंड्री आल्सो रमेश परब आवर स्टैटिस्टिशियन इन्फॉर्म्स अस ब्रिंग्स अप 4500 रन्स फॉर स्मृति मानधना, बट द क्वेश्चन इज विल शी ऐड 4502 बिकॉज़ शी इज गॉन अक्रॉस टू 4501 इन द प्रोसेस। Just outside off, it was driven on the up and Rabia Khan did ever so well. And most importantly, it does look like she's clung on. Absolutely no problems with it. She was at cover.

0: कानपुरी का लिखा बपीलहरी का सोरबत किया ये जख्मी फिल्म का गाना था।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर

0: रहा है कौन कौन
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं।

संगीतकार मदन मोहन ने 2.5 दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत।

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूँगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफ़ी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज़्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है कि उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05।
1: ये सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है कि उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05

म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैंने देखा कि कोने में रफ़ी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला।

0: म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैंने देखा कि कोने में रफ़ी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, हम मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काम छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी, रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

मदन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूँ विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

मैं यूं खामोशियों की ओट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, गिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुन।

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो? पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई।

0: से उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूँ मैं।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे।

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिर

देखती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी, मोहब्बत की हो बस। चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

ये रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के शिकवे के शिकायतों के इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना इसकी भी एक हद होनी चाहिए, एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए, मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए, जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हों तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया?

FM में 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, जिसका प्रसारण हमारी आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित

0: और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकयाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
1: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the President of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passport Amendment Rule 2026 will come into force with effect from 1st of next month. In a notification, the Ministry